हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
4: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर

0: अतिक्रमण के मामले भी हैं जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात ओडिशा राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। FM बैंड 102.1 MHz पर सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत वंदनवार।

मंगलवार कार्यक्रम में सबसे पहले आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

0: सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
1: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती झरोखा में। सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी सुबह 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। 7 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत हमें राही प्यार के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी का प्रसारण होगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 10 पिटारा में सेल्यूलाइट के सितारे। इस कार्यक्रम में सुनिए बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 11 रंग तरंग कार्यक्रम होगा। दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1 से तय करेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर के साथ सुरीले गानों का सफर। 2 त्रिवेणी कार्यक्रम सुनिएगा। 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनवाए जाएंगे। 3 सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त है। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4 पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर गायत्री आहूजा से ममता सिंह की

बातचीत प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनिए संध्या रंजन। 7:00 जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए रागों पर आधारित फिल्म संगीत राग अनुराग कार्यक्रम में। रात 8:00 हवा महल में सुनिए नाटिका चिट्ठी। लेखक हैं नंदलाल पाठक और निर्देशक हैं सीबी मंडाली। 8:15 पर सुनिए चित्रलोक। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज रात 9:30 पर आज की फनकार कार्यक्रम सुनिए जो केंद्रित है अभिनेता आर माधवन पर। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले।

11 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं। आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस। भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात,

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रही हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अतिथि श्री रविंद्र खासनीस जी से। रविंद्र जी, जब संगीत की रचना होती है तो उसमें लय ताल का विचार करना क्यों जरूरी है?
2: देखो, सुर और ताल
1: जी,
2: ये संगीत की बुनियाद है। मतलब वो एक रथ के दो पहिए हैं, और जब वो दोनों पहिए सही तरीके से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तभी वो रथ आगे जाता है या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। मतलब संगीत की जो मधुरता है वो सुर और ताल है। तो सुर और ताल में हम अभी तो ताल का विचार कर रहे हैं
1: जी,
2: तो ताल का जो अंग है वो है लय। अभी किसी भी गीत को हम लोग जब सुरों में ढालते हैं
1: हाँ,
2: तो वो एक गीत की तर्ज बन गई। अब वो तर्ज बनने के बाद अक्सर जो संगीतकार होते हैं वो इसका विचार जरूर करते हैं कि ये जो संगीत हमने दिया है इसको किस लय में होना चाहिए। मतलब उसका ताल कौन सा होना चाहिए और वो ताल जो है वो किस लय में होना चाहिए
1: जी।
2: तो जैसे हमारा जो काव्य है जिसकी

0: संगीत रचना की गई है तो काव्य की अंदर ही उसके एक लय छुपी रहती है।
1: अच्छा,
0: मतलब हर कोई काव्य जो है वो काव्य एक लय भी दर्शाता है, वो लय जो है उस लय को संगीतकार पकड़ता है। दूसरा ये है कि गाना जो है वो किस लय में अच्छा लगेगा सुनने के लिए। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग के वक्त इस बात का जरूर विचार करते हैं कि ये गाना गायक जो है वो किस स्वर में गाएगा।
1: अच्छा,
0: मतलब जैसे काली एक काली दो सफेद एक सफेद दो, ये जो स्वर है
1: जी,
0: तो इसमें कौन से स्वर में उसका होना उचित रहेगा, ये जब विचार आता है उसी के साथ में
1: जी
0: उसका लय क्या होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में टेम्पो कहते हैं
1: जी,
0: तो टेम्पो ऑफ द सॉन्ग, गाने का लय कौन सी होनी चाहिए, उसका विचार जरूर किया जाता है। अभी ये लय की जो विविधता है तो वो विविधता हमको एक अलग रंग उसमें लाती है गाने में। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, आज गावत मन मेरो झूम के
1: जी,
0: ये जो बैजू बावरा फिल्म का गीत है, तो ये गीत जो है वो विलंबित तीन ताल में है, मतलब तीन ताल की जो लय है उसमें वो विलंबित लय है। अभी दूसरा गीत है कि आए सुर के पंछी आए, सुर संगम फिल्म का ये गीत है, तो ये जो गीत है ये भी तीन ताल में है लेकिन ये मध्य लय में है। और पिछले एपिसोड के अंत में हमने जो सुना था मैं क्या जानू क्या जादू है, वो द्रुत गति तीन ताल है। तो ये जो अलग अलग रंग आते हैं वो लयकारी जो हमने उसमें रखी है
1: जी,
0: संगीतकार ने जो रखी है, उससे उसका मजा आता है, गाना सुनने का मजा उसी पर निर्भर करता है।
1: जी जी जी,
0: मेरे ख्याल से हम लोग एक उदाहरण के तौर पर आए सुर के पंछी आए जो मध्य लय
1: संगम फिल्म का ये जो मध्य लय का गीत है
0: जी,
1: इसमें थोड़ा मंद्र लय का भी मजा है और द्रुत लय का भी मजा है।
0: हाँ,
1: तो यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: श्रोताओं, तीन ताल का जो उदाहरण हम देख रहे थे, इसके लिए राग मालकांस पर आधारित सुर संगम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार पंडित राजन मिश्र। रविंद्र जी, त्रिताल के कोई और अन्य आविष्कार भी हुए हैं जिसे फिल्म संगीत में इस्तेमाल किया गया?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि नाट्य संगीत की परंपरा महाराष्ट्र में रही
0: जी,
1: तो नाट्य संगीत में तीन ताल का एक रूप बदला हुआ है।
0: हाँ।
1: कैसे है? अभी जो तीन ताल है वो है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अभी ये तीन ताल जो है इसी का अद्धा
0: जी,
1: अद्धा मतलब धा, उसका एक अवग्रह के बाद में धा।
0: अच्छा,
1: तो अवग्रह जो है
0: हाँ,
1: उससे वो होता है अद्धा। तो ये कैसे होता है, मतलब धा धिन धिन धा का रूप कैसे बदला?
2: धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा।
1: तो ये जो है धा आ धिन धा धा आ, तो ये आकार है उसके बीच में। तो उसमें क्या होता है कि वजन बदल गया, उसमें कैसे धा धिन धिन धा वो धा धिन धा धा धिन धा धा। तो ये जो बदला हुआ वजन है इसका इस्तेमाल करते हुए भी गीत पहले जैसे नाट्य संगीत में प्रचलित थे
0: जी,
1: तो फिल्मों में भी वो उस तरह के गीत आए। और अद्धा तीन ताल के गीत तो काफी अच्छे अच्छे गीत है उसमें,
0: एक निराला और सुंदर रिदम पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो कोई ऐसा गीत जिसमें अद्धा त्रिताल हाँ, हमें सुनने को मिले?
1: हाँ बिल्कुल है, बैया ना धरो, ये जो है दस्तक फिल्म का गाना
0: जी जी,
1: लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है जो राग चारुकेशी पर आधारित है
1: जी।

0: श्रोताओं, मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ दस्तक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता जी के स्वर में। इस गीत में अद्धा तीन ताल का सुंदर आविष्कार हमने देखा और इसी के साथ आज श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी देर में सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

के कहाँ जाओ।

0: छोड़ के कहाँ जाओगे?
1: अच्छा?
0: तुम बड़ा दुख पाओगे। अब जान भी लो, पहचान भी लो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म का ये गाना, गीता दत्त की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था।
1: ओ, ओ, ओ, निगाहें मस्ताना।

0: मस्ताना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत से सवारा था सचिन देव बर्मन ने।
2: सुनिए
3: कहिए
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।

0: आवाज में शैलेंद्र के बोलों को संगीत में पिरोया था शंकर जय किशन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

जलदीप का ये गाना आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा और की आवाज में, कैफ इरफानी के बोल थे जिन्हें सुरों में पिरोया था स्नेहल भाटकर ने। और अब सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। बी डी मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है एस एन त्रिपाठी ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म चार मीनार का ये गाना आशा भोसले की आवाज में। विश्वामित्र आदिल के बोल हैं, संगीत है शार्दुल क्वात्रा का।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

अभी आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म का गाना रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत में पिरोया था शंकर जय किशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा और शंकर जय किशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म धरती का ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गवार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल है और नौशाद का संगीत।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ फिल्म गीत का ये गाना। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

चित्रगुप्त की बनाई तर्ज पर आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना परदेसी फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। और आइए आपको सुनवाते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है रूठा ना करो।

चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह।

0: का चेहरा माशाल्लाह, ज़ुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह।
1: इस गीत के साथ ही अब आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार

0: आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार

0: के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा

चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है

0: में ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। FM बैंड 102.1 MHz पर सवेरे के 8:15 हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत। लीजिए साथियों, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में तड़प फिल्म के गाने के साथ। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और संगीत है प्रीतम का। तो आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं।

साहेब कहते हैं कि जब कोई अपना हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सारी जन्नत जमीन पर उतर आई है। मोहब्बत के इसी जादुई एहसास को बयां करता ये गाना हमने आपको सुनवाया, तू मेरा हो गया है। अगर आपका ही कोई ऐसा ख्वाब है तो प्लीज उसे टूटने ना दें और आंखों में जो जादू है उसे बरकरार रखें। आपका पसंदीदा राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत सुनिए ना हर बुधवार सुबह 10 बजे जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ ओनली ऑन FM सन सिटी। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM सन सिटी चैनल पर। लीजिए साथियों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं एक पायदान और आगे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये गाना।

मैं हूं ना तेरे साथ। अमान मलिक के गाए इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8:30 बजे हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। आज 3 जून को सन 2026 का 154वां अंक लेकर हम हाजिर हैं। साल का छठा महीना, तीसरा दिन, दो सूत्रधार और एक अंक, जानकारियों और सुरीले गीतों से भरा। आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
1: सूफिया खान, तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: और श्रोताओं इसी के साथ अब करवाते हैं आपको हमारी टीम से परिचय। ट्रांसमीटर पर हैं पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी। कंट्रोल रूम से चंद्रा राम पटेल। अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ हैं शैला माहेश्वरी और एफएम चैनल पर है बलवीर सिंह। नमस्कार, प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं राजेश लामरोड और संयोजन भी किया है राजेश लामरोड ने। और इन सभी के साथ मैं सूफिया खान
1: और मैं हूं गुलनाज खान। हमारी तरफ से आपका अभिवादन अभिनंदन। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में यादें हैं, बातें हैं, खुद से खुद की मुलाकात है और बहुत सारे जज्बात हैं। यादों में बातों की बहुत सारी, एक कहना चाहिए कि पोटली लेकर आए हैं। बातें हैं, यादें हैं, लोगों की, वस्तुओं की, वादों की और उन चीज़ों की जो आपने एक अरसे पहले से संभाल कर रखी थी या अब नहीं है लेकिन उसकी यादें शेष है। बहुत सारी बातें आपसे करेंगे लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज याद उनको जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर विलास शारदा जी की, जो कि महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, इतिहासकार और राजनेता थे। श्रोताओं, आज ही के दिन 3 जून 1867 को राजस्थान के अजमेर में इनका जन्म हुआ था। और जैसा कि श्रोताओं मैंने बताया कि बाल विवाह के खिलाफ कानून बनवाना इनका सबसे बड़ा योगदान है हमारे लिए। तो जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे, तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया था, जो कि 1929 को पारित हुआ था और इसे आधिकारिक तौर पर चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट कहा गया। लेकिन हरविलास जी के प्रयासों के कारण ये शारदा एक्ट के नाम से जाना गया और इसके तहत विवाह की जो न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए तो 14 वर्ष और लड़कों की 18 साल तय की गई। और समाज सुधार के साथ साथ श्रोताओं, ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें है हिंदू सुपीरियरिटी और अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव।
1: श्रोताओं, आज रूमा पाल जी अपना जन्मदिन मना रही हैं। भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही हैं। उच्चतम न्यायालय के पूरे इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली वे तीसरी महिला हैं। 3 जून 2006 को वे सेवानिवृत्त हुई। न्यायमूर्ति रूमा पाल बहुत ही विनम्र और विवेकशील मानी गई। उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने संस्था को बहुत समृद्ध किया। 1948 में कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत उन्होंने शुरू की। 1990 में कोलकाता

0: यादों के झरोखे से बहुत सारे लोगों को याद कर रही हैं, शानदार व्यक्तित्व के लोगों को याद करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ रही हैं। श्रोताओं, 1904 में चिकित्सक और सर्जन चार्ल्स ड्रू का जन्म हुआ था आज के दिन, जिनके रक्त आधान और रक्त भंडारण के अध्ययन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रक्त बैंकों को स्थापित करने में मदद की थी। साथ ही 1999 में होवरक्राफ्ट विमानों के आविष्कारक क्रिस्टोफर कॉकरेल का जन्म हुआ था। वे ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने 1950 के दशक में होवरक्राफ्ट की अवधारणा विकसित की थी और 1955 में उसे पेटेंट करवाया था। आपको बता दें कि होवरक्राफ्ट एक तरह का विमान होता है, लेकिन वो हवा में नहीं उड़ता। विमान की तरह हवा में ऊंचाई पर भी नहीं उड़ सकता, बल्कि अपने नीचे बनी हवा की परत पर सतह से कुछ ऊपर तैरता सा चलता है। इससे ये पानी, रेत, दलदल और बर्फ पर भी चल सकता है। और आज उन्हें हम याद कर रहे हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, क्रिस्टोफर कॉकरेल को।
1: और श्रोताओं, आज जन्मदिन मना रही है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुर्गडे। 3 जून 1982 को पुणे महाराष्ट्र में ये जन्मी और 3 बार की उपविजेता युगल खेलती हैं ये, और एकल भी खेलती हैं और 3 बार के

विजेता रहने के बाद उन्होंने 2009 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी, सीनियर नेशनल डबल्स रनर अप और जूनियर नेशनल डबल्स चैंपियनशिप भी रही है, और 2006 में मेलबर्न में टीम इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और साल 2014 की बात करें तो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 2017 से अब तक भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ की चयनकर्ता होने के साथ साथ टीम की कोच भी है।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

श्रोताओं, यादों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और हम याद कर रहे हैं मुथुवेल करुणानिधि जी को। भारतीय राजनेता रहे और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। एम करुणानिधि का 60 साल का शानदार राजनीतिक सफर रहा। अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने तमिल सिनेमा जगत में नाटककार और तमिल फिल्म उद्योग में एक पटकथा लेखक के रूप में की थी। समाजवादी और बुद्ध के आदर्शों को बढ़ावा देने वाली ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां लिखने के लिए भी वे मशहूर रहे। तमिल साहित्य में योगदान के लिए भी मशहूर रहे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, पटकथाएं, उपन्यास, जीवनी, नाटक और ऐतिहासिक उपन्यास, संवाद और गीत लिखे। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी थी। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और यादों के झरोखे से एक और तस्वीर रोशन हो रही है कावलम माधव पणिक्कर की। भारत के जाने माने इतिहासकार, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और विद्वान थे। वे सरदार के एम पणिक्कर के नाम से प्रसिद्ध रहे। भारत के आधुनिक राजनयिकों में सरदार के एम पणिक्कर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। वे अलीगढ़ और कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन किया और 1925 में पत्रकारिता की तरफ मुड़े और भारतीय रजवाड़ों की सेवा के दौरान राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। पटियाला और बीकानेर रियासत के विदेश मंत्री रहे और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया और

0: भारत के स्वतंत्र होने के बाद वे चीन, मिस्र और फ्रांस के राजदूत रहे।
1: और आज हम याद कर रहे हैं श्रोताओं, भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, इसके जनक त्रिभुवनदास पटेल को। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है। और वर्गीस कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल ने दूध के उत्पादन का प्लांट लगाया श्रोताओं, और इस तरह हुई अमूल की स्थापना। इस व्यवस्था से गुजरात में पूरे साल दूध का उत्पादन होने लगा श्रोताओं। और विकास के अगले क्रम में अगर बात करें तो कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला प्लांट भी खड़ा किया।

0: जी हाँ श्रोताओं, जीवन में बहुत सारी यादों के सहारे हम आगे बढ़ते हैं और आज के दिन याद आ रहे हैं जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस, जाने माने राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने व्यापारिक संघ के नेता, राजनेता और एक मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। संचार, उद्योग, रेलवे और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। जॉर्ज फर्नांडिस भारत के एकमात्र रक्षा मंत्री रहे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर का तकरीबन 18 बार दौरा किया था। लोकसभा के सदस्य, रेलवे और रक्षा मंत्री के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय राजनीति में बहुत ही अहम शख्सियत रहे। भारत सरकार ने उन्हें सन 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।
1: और अब याद कर रहे हैं श्रोताओं कृष्ण बल्लभ सहाय को, जो पहले बिहार के राजस्व मंत्री और फिर संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। कृष्ण बल्लभ सहाय उस असहयोग आंदोलन में श्रोताओं और सविनय अवज्ञा आंदोलन और किसान आंदोलन में भी सक्रिय रूप से इन्होंने सहयोग दिया था।

आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। निजी सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में विशेष नवाचार और अभिनव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले कल जल स्रोतों का पूजन किया गया, साथ ही इनकी साफ सफाई के काम भी किए गए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कुम्हेर स्थित कच्चा कुंडा पर जल पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

0: पूरे देश में एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों की साफ सफाई सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सभी नगर पालिकाओं में लोक कल्याण मेले लगाए जा रहे हैं। इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने सहित ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में लगाए गए इस मेले में रेहड़ी, ठेला संचालक, फेरी वाले और छोटे व्यापारियों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
1: लोक कल्याण मेले के दौरान पथ विक्रेताओं, रेहड़ी ठेला संचालकों, फेरी वालों, छोटे व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना से जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। अभियान के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण, डिजिटल ऑन बोर्डिंग, भुगतान को बढ़ावा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3 चरण में 90,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजना से जोड़कर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ण नगरी में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राज्य में अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकार समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कल शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अब सहकारी समितियों का आवंटन भी ऑनलाइन किया जाएगा। श्री कुमावत ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाकर उन्हें अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। राज्य में इन दिनों पुलिस की ओर से बाल मजदूरी के खिलाफ उमंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण बनाना और पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के लिए हर जिले में थानेवार विशेष रेस्क्यू टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति और एनजीओ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह ने कल एक बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को बाल तस्करी और मजदूरों के विरुद्ध जागरूक करने के निर्देश दिए, साथ ही इन कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। आज विश्व साइकिल दिवस है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 3 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य किफायती, बिना ईंधन वाले, पर्यावरण और स्वास्थ्य हितैषी एवं परिवहन के माध्यम साइकिल को लोकप्रिय बनाना है। इस वर्ष की थीम हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना रखी गई है। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके जरिए साइकिल के उपयोग को लगातार बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर आज अजमेर में साइकिल रैली रखी गई। ये रैली आनासागर चौपाटी में शुरू हुई। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के कई नागरिक नियमित रूप से साइकिल का उपयोग कर स्वस्थ जीवन शैली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से कई स्थानों पर कल भी आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रही। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर दिन का पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटों में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं माउंट आबू में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

मौसम विभाग ने आज और कल सभी संभागों में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान कहीं-कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आने की आशंका है। बीकानेर, चूरू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां तय समय में जारी करने को कहा, साथ ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अब तक 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार ने CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, नीलाम खानों को जल्द शुरू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश में आए मौसम के बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट, गर्मी से मामूली राहत मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। इस समय आकाशवाणी जोधपुर की सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
1: सूफिया खान।
0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाते हुए यादें उन बातों की, उन घटनाओं की जो इतिहास के आईने में रोशन रही हैं और स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं, डालते हैं एक नज़र क्या है आज का दिन इतिहास में। सन 1818 में भारत में ब्रिटिश और मराठा संघों के बीच मराठा युद्ध समाप्त हुआ था आज ही के दिन। और 1916 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महत्वपूर्ण कानून राष्ट्रीय रक्षा अधिनियम 1916 को कानून का रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य अमेरिकी सेना को अधिक संगठित और सशक्त बनाना था, विशेषकर उस समय जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। १९१८ में गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई।
1: और आज ही के दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के दो हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था श्रोताओं, और इस बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ भारत का बंटवारा भी हुआ।
0: १९५९ में सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया था आज के दिन। आज ही के दिन ब्रिटेन ने रक्षा और विदेश नीति को छोड़कर अधिकांश आंतरिक शासन की शक्तियां सिंगापुर की निर्वाचित सरकार को सौंपी थी। १९६५ में एड व्हाइट नासा के पहले अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी। वे लगभग 23 मिनट तक अंतरिक्ष के निर्वात में तैरते रहे। ये मिशन जेमिनी 4 के दौरान हुआ था। और आपको बता दें कि लियोनोव फर्स्ट थे जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी।
1: 1915 में श्रोताओं, ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था आज के दिन। और जलियांवाला बाग कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि फिर से लौटा दी थी।
0: १९७२ में देश के पहले और भारत निर्मित आधुनिक युद्ध पोत

0: नीलगिरी को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उपस्थिति में जलावतरित किया गया था। मजगांव मुंबई में INS नीलगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। आज के दिन एक खुशखबरी भी मिली थी। 1985 में भारत सरकार ने प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू किया था।
1: श्रोताओं, साल 2004 में आज के दिन केन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने थे। में आज के दिन जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था।

0: नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। ২০০৯ में मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर चुना गया और वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी।
1: साल 1999 में युगोस्लाविया द्वारा कोसोवो शांति योजना को मंजूरी दी गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावित समझौता था कोसोवो संकट को समाप्त करने के लिए, जिसका उद्देश्य सर्बिया और कोसोवो के बीच हिंसा रोकना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना था। और श्रोताओं, आज ही के दिन 1999 में मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। सन 2018 में भारत ने देश में विकसित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा तट के पास सफल परीक्षण किया था।

इंतज़ार के लम्हे भी बड़े बोझिल होते हैं। इंतज़ार होता है जब किसी वस्तु के मिलने का, किसी व्यक्ति के मिलने का, या फिर ऐसी धरोहर के मिलने का जिनका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया हो, और इंतज़ार की घड़ियाँ अचानक से ख़त्म हो जाती हैं। श्रोताओं, पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि नीदरलैंड सरकार द्वारा भारत को ताम्रपत्र वापस दिए गए थे। इन ताम्रपत्रों की वापसी को सिर्फ पुरातात्विक वस्तुओं की वापसी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्मृतियों की पुनर्प्राप्ति माना जा रहा है। ये उन ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है जो औपनिवेशिक दौर में विदेश पहुंच गई थी। बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में फ्लोरेंटिस कैंपद नामक एक डच मिशनरी ने इसे भारत से नीदरलैंड लेकर गई थी, और उसके बाद हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी हो गई थी। और आज हम ख़ास बात यही करने वाले हैं। सप्ताह विशेष में हमारा जो सेगमेंट होता है उसमें हम इतिहास पर नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे आने

0: मंगलम ताम्रपत्र पर कुछ जानकारी।
1: ये ताम्रपत्र श्रोताओं 11वीं सदी के दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल साम्राज्य से संबंधित है और इन 21 बड़ी प्लेटों को बनाने की शुरुआत जो है वो महान चोल सम्राट राज राजा चोल प्रथम के शासनकाल में हुई थी और इन्होंने ही अपने मौखिक वादे को यानी राज राजा चोल प्रथम के एक मौखिक वादे को उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने इन ताम्रपत्रों के माध्यम से कानूनी और औपचारिक रूप इन्हें दिया था। इस पूरे संग्रह में 24 ताम्रपत्र शामिल है श्रोताओं, जिनमें 21 बड़े ताम्रपत्र राज राजा प्रथम के काल के और 3 छोटे ताम्रपत्र कुलोत्तुंग चोल प्रथम के काल के हैं।
0: श्रोताओं, इन ताम्रपत्रों को चोल प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता का बड़ा प्रमाण माना जाता है। इन ताम्रपत्रों में दान की गई भूमि, उसकी सीमाओं, राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधों का विस्तृत विवरण मिलता है। इन ताम्रपत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में संस्कृत में पाठ है और दूसरे में तमिल में लिखा गया है। पट्टिकाओं में संस्कृत और तमिल भाषा में विष्णु स्तुति और चोल वंश की वंश परंपरा भी दर्ज है।
1: इनका कुल वजन श्रोताओं 30 किलोग्राम बताया जाता है। ये प्लेटें एक बड़े कांसे की छल्ले यानी ब्रॉन्ज की छल्ले से आपस में बंधी हुई है, जिस पर चोल वंश का शाही प्रतीक बाघ, पांड्य वंश का प्रतीक जुड़वा मछलियां और चैर वंश का प्रतीक धनुष अंकित है। और इनमें दर्ज है कि राजराजा चोल प्रथम ने नागपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित चूड़ामणि विहार नाम के एक बौद्ध मठ के रखरखाव के लिए अनयमंगलम गांव से मिलने वाले राजस्व और कर को दान किया था। और श्रोताओं 18वीं शताब्दी के आसपास डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के दौरान एक डच अधिकारी जो है फ्लोरेंटिस कैंपर इन्हें कोरोमंडल तट से अपने साथ ले गया था
0: और उसके बाद 1862 में लीडेल विश्वविद्यालय को इसे सौंप दिया गया था, जहां इन्हें संरक्षित रखा गया। भारत ने सन 2012 से ही इनकी वापसी के प्रयास शुरू कर दिए थे और हाल ही में नीदरलैंड ने चोल राजवंश से जुड़े ताम्रपत्र भारत को वापस लौटा दिए हैं। चोल साम्राज्य से जुड़ी इस ऐतिहासिक धरोहर की वापसी को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। श्रोताओं, ये ताम्रपत्र केवल दान पत्र नहीं है बल्कि अपने समय का सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज है। हमें उस काल की धार्मिक सहिष्णुता और चोल शासकों द्वारा बौद्ध संस्थाओं को संरक्षण दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। आने मंगलम ताम्रपत्र केवल तांबे की पट्टिकाओं पर लिखा एक अभिलेख नहीं है, इतिहास का वो दर्पण है जो हमें गौरव प्रदान करता है।
2: मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां।

0: जी हाँ, तकदीर ऐसी कहाँ होती है सबकी, हो जिसको अचानक से कोई खुशी मिल जाए। कभी कभी ज़िंदगी में अचानक से खुशी मिल जाती है और कभी सरे रहा उनसे मुलाकात हो जाती है और चालान हमारे हाथ में आ जाता है। श्रोताओं, राजस्थान में परिवहन विभाग चलाने वाला है एक विशेष अभियान जिसमें आपके वाहन पर होगी कड़ी नज़र। अगर आपने वाहन में अमान्य मॉडिफिकेशन किए हैं तो आपको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। काम की बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
1: और वाहनों में जो प्रेशर हॉर्न है, वाहनों से जो काली फिल्म है, कहते हैं काली शीशे उनको, जो हटाने के लिए एक बड़ा विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। श्रोताओं, इसमें प्रदेश भर के वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों से इन्हें हटाने के लिए 3 जून तक का समय दिया गया है। यदि गाड़ी में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो भारी चालान काटने के साथ साथ वाहन को सीज करने और लाइसेंस निरस्त करने तक के निर्देश दिए गए हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, परिवहन विभाग के आदेश अनुसार मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों के विपरीत वाहन की संरचना में कोई भी बदलाव करना, अनाधिकृत लाल नीली बत्ती लगाना, रात को एक्स्ट्रा लाइट लगाकर ड्राइव करना, फ्लैशर लगाना, हूटर लगाना और साथ ही एयर हॉर्न और प्रेशर हॉर्न लगाना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। चालान लाइसेंस को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। साथ ही फैंसी नंबर प्लेट, जाति, पद, संगठन या गाड़ी पर कुछ भी शब्द लिखना, स्टिकर लगाना, एक्स्ट्रा डार्क ब्लैक फिल्म शीशों पर चढ़ाना, रजिस्ट्रेशन चिन्ह को अस्पष्ट बनाना जैसे काम अगर आपने किए हैं अपनी गाड़ी के साथ तो ये सब कार्रवाई के दायरे में होगा और इसके लिए आपको हर्जाना भी चुकाना पड़ सकता है। और साथ ही वाहनों पर नियमित मानकों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना भी अनिवार्य है। तत्काल ऐसे मॉडिफिकेशन अगर आपने लगाए हैं तो हटवा लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सफ़र हमेशा सुखद रहे। और इस सफ़र की शुरुआत तो बचपन में हो जाती है, जब अचानक से हमें एक दिन साइकिल मिल जाती है और फिर वही यादों का दामन थामते हुए बहुत सारे वो दिन याद आ जाते हैं कि जब दिल ढूंढता है वो दिन जब सुकून हुआ करता था, रात और दिन एक अलग माहौल होता था।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जी हाँ, दिल ढूंढता है उन दिनों को और दिल ढूंढता है उस प्यारी सी यादों को भी, जब रात दिन एक साइकिल हमारी सफ़र का साधन हुआ करती थी। दो पहियों पर यादों का सफ़र एक ऐसा साधन था जिसने पीढ़ियों को गति दी, सपनों को पंख दिए और जीवन का संतुलन कैसा होना चाहिए उसका पाठ पढ़ाया। जी हाँ श्रोताओं, साइकिल, साइकिल का जिक्र आते ही स्फूर्ति आ जाती है ना, और याद आते हैं वो दिन जब भरी दोपहरी में साइकिल इधर उधर दौड़ाते रहते थे, और उससे पहले के वो दिन भी याद आते हैं जब साइकिल चलानी नहीं आती थी, तब भी बड़े शान से हैंडल पकड़कर पैदल पैदल चलते थे अपनी शानदार साइकिल के साथ, फिर कैंची चलाते, कभी डंडे पर उचक उचक कर पैडल चलाते। सुहाना मौसम हो और साइकिल का साथ हो तो वाह क्या कहना, साइकिल स्टैंड पर खड़ी अपनी साइकिल किसी लग्जरी कार से कम नहीं लगती थी। गाडूलिया, फिर छोटी ट्राइसाइकिल से लेकर बाईसाइकिल का सफ़र बहुत सुखद और शानदार था। आपकी भी कुछ ऐसी ही स्मृतियाँ होंगी ना?
1: और साइकिल से सभी की यादें जो हैं जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं हमारे घर में साइकिल जो है वो हमेशा रहती है, बच्चों की होती है और कोई फिटनेस ट्रिक है उसकी भी होती है। साइकिल में चलते चलते परिवर्तन भी आया श्रोताओं, लेकिन साइकिल जो है वो शान हमारी आज भी है और पहले भी थी। और इसी साइकिल दिवस पर आज हम ऐसी शख्सियत से आपको फोन आउट के माध्यम से मिलवाने जा रहे हैं श्रोताओं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती रेणु सिंघवी की, फेमस साइकिलिस्ट हैं ये, और उनसे बात कर रहे हैं गुलाज खान।
0: रेणु जी, आपका हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में, और आज विश्व साइकिल दिवस पर आपको ढेर सारी मुबारकबाद शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी परिवार की ओर से।
2: नमस्ते मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आज का दिन खास है, खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आपके पास आज एक सुंदर सजीली साइकिल है जिससे आपने अपने पंखों को उड़ान दी, सपनों को साकार किया।
2: जी मैम।
0: रेणु जी, ये सफर कहाँ से और कैसे शुरू हुआ?
2: कहते हैं ना, नियति अपना रास्ता बनाती है, और हम बचपन में तो साइकिल चलाते थे और कॉलेज भी साइकिल पे जाते थे, स्कूल भी साइकिल पे जाते थे, तो कहीं ना कहीं दिल में साइकिल तो बसी हुई थी। 30 साल बाद वापस एक मौका मिला उस साइकिल पर बैठने का और ऊंचाइयां छूने का। दिलाने तो अपने छोटे बेटे मयंक को साइकिल गई थी, जो अभी मेडिकल जोधपुर का मेडिकल संभाल रहा है, उसको आयरन मैन करना था, और मुझे अपने को एक लेडी बर्ड जैसी साइकिल लेनी थी ताकि मैं अपने पोते पोते को साइकिल पर बैठा के घुमा सकूं और अपना छोटे मोटे जीवनचर्या के जो काम है, दूध लाना, सब्जी लाना, और साइकिल पे कर सकूं। सोच के तो वही निकली थी, अपना आप ही कुदरती ने रस्ते बनाए। एक जाके जब खरीदी साइकिल, तो जिसके यहाँ से खरीदी उसने बोला आपको चलानी आती है? मैंने कहा सर 30 साल पहले चलाई थी, अब वापस मौका मिल रहा है तो लेनी, आप फिर चला लोगे? मयंक से पूछा, मयंक बोला कि आप क्या करोगे? मैंने कहा जो तू करेगा वो मैं भी कर लूंगी, थोड़ा बहुत चला लूंगी साइकिल। और एक हम ले साइकिल लेके आए और काफी दिन तक, 10-15 दिन तक वो साइकिल सजी रही, क्योंकि वो जैनों वाले फास्ट थे, 8 दिन के उपवास थे, पोजिशन थे, तो कुछ खाया हुआ नहीं था, तो दिमाग में बस वही बैठा हुआ था कि अभी शरीर में ताकत नहीं है, 5-7 दिन बाद चलाएंगे।
0: और रेणु जी, ऐसा भी लगा होगा ना कि बचपन में और फिर कॉलेज के बाद साइकिल एक तरह से आपकी छूट गई थी, और फिर इतने सालों के बाद साइकिल पर बैठना और सफर करना कहीं एक झिझक रही होगी। वैसे एक बात है कि हर साइकिलिस्ट के साथ में उसकी एक पहली साइकिल की यादें जुड़ी होती है, और ख़ास तौर पर पहली राइड की भी यादें जुड़ी होती हैं, तो ये भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें।
2: हाँ।

0: हाँ, मैं पहली राइड जब ली साइकिल तो मैंने पहले दिन जब चलानी चालू करी तो 10-15 किलोमीटर चलाई, गियर बदलने नहीं आते थे। तो आज भी मुझे दिन याद है, मैंने गियर लाइट कर दिए और वो जो पहाड़ पे चलते हैं वैसी लूज पैडलिंग हो गई। जैसे तैसे घर पहुंची, घर पहुंच के तैसे लगा कि भैया अपने से तो ना हो पाएगा। फिर बड़े छोटा वाला बेटा आया, उसने बोला कि नहीं आप 2 और 5 पे चलाओ, आपसे चलेगी। फिर थोड़ा उसने मोटिवेशन दिया, बड़े वाले ने मोटिवेशन दिया और फिर वापस एक नया सफर चालू किया और साइकिलिंग की, पैडलिंग अब घूम रही है। पहले मेरी ट्रिप जयपुर में एक डेजर्ट ट्रेल करके है, तो मैं पहले दिन तो मैं साइकिल, हमारे को सांगानेरी गेट पे हमारा टी पॉइंट था वहां पे मिलने का था, गाड़ी में डाली साइकिल, वहां लेके गई, वहां से चला के फिर हम डेजर्ट ट्रेल गए। फिर पहले बार ऐसा हुआ कि मैंने गाड़ी में डाल के ले गई, उसके बाद में आज तक कभी साइकिल गाड़ी में डाल के लेके नहीं गई। अब मैं खुद घर से पैडलिंग करके जाती हूँ चाहे कितना ही लंबा सफर हो।
1: जी, और जब आपने पहली बार एक लंबी दूरी तय की, तब क्या आपको कभी ऐसा लगा कि एक दिन लोग आपको आयरन लेडी के नाम से जानेंगे?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। मेरी पहली राइड डेजर्ट जो थी हमारे घर से करीब 40-50 किलोमीटर थी, और जब मैंने राइड खत्म की तो 40-50 किलोमीटर, क्योंकि मैंने बीच में ही गाड़ी में डाल के वापस ले आई तब मेरी 40 हुई। उसके बाद मैंने एक हायर कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया, जब तक मैंने 30-40 किलोमीटर भी मुश्किल से चलाई थी, और मैंने फिर 60 किलोमीटर थार में एक पार्टिसिपेट लिया। MTV था, मैं शौक शौक में ले तो लिया, लगा नहीं था कि हम कभी पोडियम कर पाएंगे। तो वहां से एक जर्नी का स्किट चालू हुआ, उसमें मैं सेकंड आई, तब कहीं लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसी प्रकार फिर सेकंड थार आया तो 115 किलोमीटर की MTV राइड थी, उसमें भी सेकंड आई। फिर हौसले बुलंद होते गए, फिर BRM की 200 करी, जो 13 घंटे का टाइम था वो करा, फिर 300 किया, फिर 400 किया, फिर 500 किया, फिर 600 किया।
1: उसके बाद आप 1200 भी पे पहुंच गई?
0: जी हाँ, 1200 पे, फिर 1550 पे, फिर 4200 पे।
1: जी, आपने लंदन, एडिनबर्ग, लंदन की भी आपने दूरी तय की थी साइकिल से, और साथ ही आपने हर साल होने वाली पेरिस में सेल्फ सपोर्टिंग एंड्योरेंस राइड, जो पेरिस ब्रेस्ट पेरिस में होती है, इसमें आपने सन 2019 में सफलतापूर्वक इसे पूरा किया था। तो कैसा रहा था ये आपका अनुभव?
0: ये बहुत एक हमारे लिए सपने जैसा था, क्योंकि उसके पहले कभी 600 से ज्यादा कभी चलाई नहीं थी, तो 1200 चलाना एक हमारे लिए टास्क था। प्लस हमारे साथ में जो भी लोग गए थे उन्होंने गिव अप कर दिया था 200, 200, 300, 400 पे, तो मैं अकेली रह गई थी। तो मुझे वो सफर अकेला पूरा करना पड़ा। रास्ते में मैं एक जगह रास्ता भटक गई, कुछ गलत लोग मिल गए, फिर जैसे तैसे मैं कंट्रोल पॉइंट पे पहुंची। तो वो पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं फिर 2 घंटे लेट फिनिश करी, लेकिन मेरा जो टाइम 90 आवर्स का था, 92 में फिनिश किया। तब तक इंडिया में 100 साल की हिस्ट्री में किसी लेडी ने पेरिस ब्रेस्ट पेरिस किया नहीं था, तो एक बहुत अलग सा रोमांच था और एक अलग सी खुशी थी।
1: बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रेणु जी, जब भी साइकिल चलाते हैं, लंबी दूरी पर जाते हैं, तो नेविगेशन की भी समस्या रहती होगी, तो किस तरह से उसका समाधान आप करती हैं?
0: हमारे पास एक डिवाइस होता है गार्मिन करके, हम वो जो रूट है वो उसके ऊपर डाउनलोड करते हैं और फिर उसके सहारे चलते हैं। पर पहली बार जब मैं गई थी पेरिस, तब मेरे पास गार्मिन था, पर मुझे उसका उपयोग करना ज्यादा नहीं आता था, सीखा नहीं था, इतना आता भी नहीं था। तो जैसे वहां पे नेविगेशन के लिए एरो मार्क करे हुए थे, तो उसके सहारे सहारे हम लोग पहुंच गए। जहाँ गलत तो एक किसी ने मार्क हटा दिया था, तो फिर वो हम लोग गलत रास्ते चले गए थे। पर नेविगेशन के लिए हमारे पास अब गार्मिन और बहुत अच्छे से डिवाइस आ गया है, वाहू आ गया है, तो उसमें डाउनलोड करके वो पूरा रूट हम उसी से तय करते हैं।
1: शारीरिक रूप से अपने आप को आप किस तरह से तैयार करती हैं इतनी लंबी दूरी की साइकिलिंग के लिए?
0: शारीरिक से ज्यादा मेंटल आपको तैयार करना पड़ता है।
1: जी
0: शारीरिक तो क्षमता 90% सभी में होती है, पर मेंटल आपको तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि हम कितनी बार ये सोच के घबरा जाते हैं कि इतनी लंबी दूरी कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे सफर पूरा होगा। तो मेंटल अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कोई भी कठिनाइयां पार कर सकते हैं।
1: चलिए, मानसिक रूप से तैयार हो गए, शरीर भी स्वस्थ है, अब हमें साइकिल भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब बैकपैक में हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए?

0: ये अगर हम लंबी दूरी की साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं,
1: दूरी के लिए अनसपोर्टेड है तो सबसे पहले हमको साइकिल किट रखना पड़ता है, पंचर का सामान, ट्यूब, टायर, ल्यूब, पंचर किट, और रोज और दवाइयाँ, थोड़ी सी मेडिसिन रस्ते में कोई आपको इंजरी हो जाए वो प्रॉब्लम, खाने के थोड़े से न्यूट्रिशंस, बादाम हुआ, फास्टनप हुआ, या जो भी आप लेना चाहते हैं। मैं जनरली रस्ते में नींबू पानी और गुड़ का पानी बना के लेके चलती हूँ, या गुड़ साथ में लेके चलती हूँ, या टॉफी ले सकते हैं। और कभी कभी हमारे बॉडी में नमक कम हो जाता है तो थोड़ा सा हम सॉल्ट, रस्ते में कहीं भी मिलता है तो हम कोल्ड ड्रिंक में सॉल्ट डाल के थोड़ा पी लेते हैं, तो थोड़ी सी हमारे को होती है, एनर्जी आ जाती है। और अगर लंबी की दूरी है और अनसपोर्टेड है तो आपको कम से कम कपड़े रखने पड़ते हैं, कम से कम, जिससे कि आप साइकिल पे आपका लोड ज्यादा नहीं हो। और फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है कि साइकिल का पूरा सामान हो, जो आपको कहीं भी रास्ते में दिक्कत हो तो आप साइकिल रिपेयर खुद कर सको।
0: जी, और उसमें पंचर लगाना अहम बात है कि वो आना चाहिए,
1: जी,
0: और
1: पंचर
0: साथ में एक
1: लगाना, छोटी मोटी चीजें ठीक करना, वो सारा मैटर करता है।
0: जी, और अपनी क्राउनिंग ग्लोरी को भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। सर पर एक बहुत अच्छा हेलमेट भी होना ज़रूरी है।
1: हाँ जी, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी, हेलमेट है, लाइट है, फ्रंट लाइट है, बैक लाइट है, पावर बैंक है, गार्मिन आपका हर समय चार्ज होना चाहिए, फोन आपका हर समय चार्ज होना चाहिए, ये नेसेसरी तो बहुत जरूरी है। फिर आप अगर विंटर में हो तो विंटर जैकेट, रेन जैकेट, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको ठंड लग गई या बारिश में आप भीग गए, आपके शूज कवर होने चाहिए, ये प्रॉपर चीजें होना बहुत जरूरी है। हेलमेट कवर होना जरूरी है, जैसे कि बारिश में आपका सिर गीला नहीं हो, क्योंकि बाहर की कंट्री में जाते हैं तो वहाँ ठंडक होती है, तो ठंडक से आपका सिर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको कवर करके चलना पड़ता है।
0: जी, अब आगे आपने क्या सोचा है?
1: आगे से सोचा तो बहुत कुछ है, अब देखो कब
0: सोचिए,
1: पूरा
0: सोच
1: होता
0: से
1: है।
0: ही सृजन होता है और सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं। सपने भी आकार लेते हैं हमारी सोच के अनुसार ही।
1: जी, मैम, जी मैम, कश्मीर से कन्याकुमारी है, वैसे काफी चीजें हैं लिस्ट में, अब देखते हैं कैसे समाधान निकलते हैं और कैसे करते हैं।
0: जी, युवा पीढ़ी को आप कोई संदेश देना चाहेंगी, या वे लोग जो साइकिल चलाना जानते हैं लेकिन एक झिझक उन्हें रोके हुए है, और साइकिल की अहमियत को बताते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज के खास दिन?
1: आज युवा पीढ़ी को तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ समय निकालें, कोई भी शारीरिक व्यायाम करें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, कम से कम 1-2 घंटा। आज की जो लाइफ है स्ट्रेसफुल है, आप अगर बाहर थोड़ा सा भी निकलते हैं और रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आप काफी चीजें उस दौरान आप भूल जाते हैं, आपके नए दोस्त मिलते हैं, नई कम्युनिटी मिलती है, नए क्लब मिलते हैं, आप उससे जुड़े, और ग्रुप में साइकिलिंग करें। ग्रुप में साइकिलिंग करने का फायदा ये है कि आप मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को देख के, आप जो 10 किलोमीटर चलाते हो आप 20 किलोमीटर भी चला सकते हो, 70 भी चला सकते हो, कभी 200 भी चला सकते हो। जिस तरह से मैंने चालू किया, मैंने भी 15-20 से चालू किया, और क्लब के कारण ही मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। मेरे को जोधपुर क्लब का बहुत सपोर्ट मिला, जयपुर क्लब का बहुत सपोर्ट मिला, मैं पटियाला जाती हूँ, पटियाला क्लब का बहुत सपोर्ट मिला, बरेली क्लब का बहुत सपोर्ट मिला। तो ये बिना सपोर्ट के थोड़ा अकेले चलाने में थोड़ी सी बोरियत लगती है, पर ग्रुप में होते हैं तो आपको मोटिवेशन तो मिलता है।
0: जी हाँ,
1: और
0: जब
1: ये
0: गिरते हैं तो
1: हाँ,
0: उठाने वाले भी मिल जाते हैं और ये कहने वाले भी मिल जाते हैं कि कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई।
1: चीटी मर गई, जी मैम, क्योंकि मेरे भी 2-3 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, पर मैं ग्रुप में साथ में थी तो मुझे सपोर्ट मिला, फटाफट डॉक्टर के पास ले गए इमरजेंसी में, और सब कुछ ठीक हो गया। अकेले गिर पड़ जाओ तो भी मुश्किल है,
0: जी
1: और कम से कम इसमें आपकी हेल्थ ठीक रहती है, साइकिलिंग से आपका पर्यावरण सही रहता है, पेट्रोल की बचत होती है, छोटे मोटे के जो रोजमर्रा के काम अगर हम साइकिल पे करने लगे, क्योंकि हम पहले, हमको मुझे याद है कि मेरे बच्चे छोटे भी थे तभी भी मैं साइकिल पे ग्रोसरी लेने जाती थी, साइकिल पे ही छोटे मोटे काम करती थी, तो ये काम थोड़े बहुत करने चाहिए। और आज हमारे जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ी बहुत साइकिल सिखानी चाहिए, कि आज की युवा पीढ़ी को मैंने देखा, आजकल बच्चे, छोटे बच्चे कम साइकिल चलाते हैं, डर डर के कारण नहीं चलाते हैं, पेरेंट्स तो ये डर रहता है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कुछ हो नहीं जाए, तो वो भी एक स्वाभाविक है पेरेंट्स का डर लगना। बस आज के जमाने में में साइकिल सिखाना बहुत जरूरी।

0: जरूरी है। अगर
1: जी
0: साइकिल सीखी हुई है तो आप टू व्हीलर कोई भी बाद में भी चला सकते,
1: जी
0: बेसिक चीज है साइकिल।
1: जी साइकिल के प्रति आपका लगाव, उत्साह, जुनून और जज्बे को देखते हुए ही दुनिया ने आपको आयरन लेडी कहा और इसीलिए आपको बहुत सारी उपलब्धियाँ भी मिली और आज हम आपसे मुखातिब रहे। आपने अपना वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी प्रेरणादायक बातें हमें बताई, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ आपको और हमारे से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा, थैंक यू
1: जी, शुक्रिया।
2: अभी हम जुड़े फोन आउट माध्यम से साइकिल दिवस पर श्रोताओं रेणु सिंह जी से, फेमस साइकिलिस्ट और आयरन लेडी रहेंगे, और अभी सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: टोली भर जाती मुरादों की झोली, साइकिल पे हसीनों की टोली।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
4: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
5: कहते हैं साइकिल यूरोप से जुड़ा है, जहां इसका प्रचलन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उस समय पूरे विश्व में कहना गलत ना होगा कि तकरीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा साइकिल हैं, और चीन और नीदरलैंड जैसे देशों में साइकिल जो है वो एक आवागमन का मुख्य साधन है।
6: और श्रोताओं, पैर से घुमाए जाने वाली पैडल जो होता है, उसके पहिए का आविष्कार भी 1865 में पेरिस के लाले मैंट ने किया था, और इसे वेलिसुपीट कहा गया। इसके लोकप्रिय होने और इसकी मांग बढ़ने के कारण इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के यंत्र निर्माताओं ने इसमें बहुत सारे सुधार किए। 1872 में सुधार किए गए और इसमें एक लोहे की पतली पट्टी के तानयुक्त पहिए लगाए गए। आगे का पहिया होता था 30 इंच और पीछे का 64 इंच उसका व्यास होता था, और इसके बाद में क्रैकों के अलावा गोली के वायरिंग और ब्रेक भी लगाए गए, और इसे आधुनिक साइकिल कहा गया। और आज के दौर में तो श्रोताओं, कई तरह की साइकिल मौजूद है।

श्रोताओं, साइकिल पर कई तरह के अनुभव होते हैं और इस गीत में भी कुछ इसी तरह का अनुभव था कि कई बार साइकिल चलाते हुए मनचलों से सामना भी हो जाया करता था। बहरहाल ये यादें हैं और कई सुखद यादें हैं। साइकिल के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। साइकिल सिर्फ दो पहियों का वाहन नहीं बल्कि हमारी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। एक ऐसा साथी जिसने हमें संतुलन सिखाया और आगे बढ़ना भी सिखाया। याद है वो समय जब घर में साइकिल होना किसी शान से कम नहीं था। पहली बार साइकिल चलाना सीखना भी किसी परीक्षा से कम नहीं था। पीछे से पिता या बड़े भाई का सीट पकड़े रहना हमें बड़ा अच्छा लगता था और हम पूरे विश्वास के साथ पैडल मारते चले जाते थे। फिर एक दिन अचानक पता चलता था कि पीछे पकड़ने वाले हाथ कब के

और श्रोताओं, भारत की बात करें तो साइकिल ने भारत में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद कई दशकों तक ये यातायात का जरूरी हिस्सा रही। श्रोताओं, गाँव में किसान के लिए मंडियों तक फसलों को साधन पहुंचाने का साधन रही साइकिल, जो आज भी है। दूध विक्रेताओं और श्रमिकों के लिए बड़े काम का साधन मानी जाती है साइकिल। डाक विभाग का तो पूरा तंत्र ही श्रोताओं साइकिल से चलता है।

श्रोताओं, चांद पकड़ने की जो एक ताकत है, बेशक हम में ना हो, लेकिन ख्याल ज़रूर आता था साइकिल पर बैठकर। दरवाज़ों पर साइकिल की घंटी संकेत होती थी कि डाक आई क्या। डाक विभाग का पूरा तंत्र, जी हाँ, साइकिल के बलबूते पर चलता था। सुबह शाम साइकिल की घंटी दूध वाले के आने का संकेत देती थी। घर के बड़े जब साग सब्जियाँ लेकर आते तो फट से साइकिल की ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते थे और हम बच्चे खुशी से उछलते कूदते अपनी चीज़ लेने के लिए दौड़ते थे। कितनी सुखद थी ना वो घंटी। अब स्कूटर कारों और वाहनों की भीड़ में ये सुनने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ, यादें तो हमारे साथ है ना।

0: बेटर।
1: बिल्कुल श्रोताओं, बेटर है साइकिल चलाना, क्योंकि आधा घंटा अगर आप साइकिल चलाएंगे तो आपकी पेट की जो चर्बी है वो कम होती है। ताज़ी हवा में अगर आप निकलेंगे सुबह के समय तो आपकी फिटनेस इससे बनी रहती है। एक स्टडी बताती है श्रोताओं, रोज़ाना अगर हम 30 मिनट साइकिल चलाएं तो व्यक्ति का जो दिमाग है साधारण व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव रहता है और ब्रेन पावर भी 15 से 20% ज़्यादा बढ़ता है।

श्रोताओं, ये मानना आसान है कि गियर वाली साइकिल हाल ही की खोज है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1871 में ही ये मौजूद थी। ये व्यवहारिक नहीं थी क्योंकि गियर बदलने के लिए साइकिल से उतरना पड़ता था, पहिया निकालना पड़ता था, उसे पलटना पड़ता था और फिर से लगाना पड़ता था, और ये बहुत व्यवहारिक नहीं था। लेकिन फिर भी ये पहली गियर वाली साइकिल थी और इसके आविष्कार का श्रेय जेम्स चार्ली को जाता है। और साइकिल तो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा रही है। एक विचार से बस शुरू हुआ, हमारे आसपास की हर वस्तु एक विचार से ही शुरू होती है और फिर इसका निर्माण और फिर आविष्कार हो जाता है। और बस गुजरते हुए समय के साथ साथ साइकिल का भी स्वरूप बदलता चला गया। एक विचार से शुरू हुआ था और अलग अलग आविष्कारों के प्रयोग से विकसित हुई 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी के बीच कई तरह के विकासों से गुजरी और आज एक बेहतरीन स्वरूप के साथ साइकिल हमारे सामने है।

श्रोताओं, साइकिल की अहमियत पहले भी थी और आज भी है, और इसकी ये वजह भी है कि चीन के बाद दुनिया में आज सबसे ज़्यादा साइकिल भारत में बनती है और साइकिल शोभा बढ़ाती है, साइकिल म्यूज़ियम का भी हिस्सा बनती है। और श्रोताओं, यहाँ पर एक बात और आपसे कहना चाहेंगे जो सीधे तौर पर साइकिल के विकास के बारे में नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी में साइकिल चलाने के प्रति लोगों के जुनून के प्रभाव के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से साइकिल ही वो कारण हो सकती है जिसके चलते आज हमारे पास हवाई जहाज़ है? समझ नहीं आ रहा ना, चलिए समझाते हैं। 1890 के दशक में जब साइकिल का क्रेज छाया हुआ था, तब विल्बर और ओरविल राइट नाम के दो भाई भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कई रेसों में हिस्सा लिया, लेकिन उससे भी बढ़कर ओहियो के डेटन में उनकी कई साइकिल की दुकानें थीं जिनसे उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। उन्होंने साइकिल के निर्माण और डिज़ाइन में भी हाथ आजमाया और अपनी सूझबूझ और महत्वाकांक्षाओं से उन्होंने हज़ारों डॉलर कमाए, बचाए और एक बड़ी रकम उनके पास आई, और उसके बाद उसे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना में खर्च किया, और वो थी आसमान में यात्रा करना, सपनों को पंख देना।

0: श्रोताओं, साइकिल ने बहुत मुतासिर किया है हमारे रुपहले पर्दे को भी। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी, बहुत सारे गाने ऐसे रहे जिस पर साइकिल हमें नज़र आई। आगरा रोड, अदालत, मिस इंडिया 1957 और पुरानी फिल्म परदेस, उसमें भी साइकिल पर गीत है। घर संसार में चोट कैसे लग जाती है, साइकिल से गिरने पर क्या हो जाता है, वैसा ही एक गीत भी है। और खजांची फिल्म में साइकिल नज़र आ जाएगी, अजीब लड़की और साइकिल वाले बाबू, ये गीत इस फिल्म में था। और साइकिल की सवारी रमोला ने एक गीत गाया था फिल्म मनचली में। साथ ही हजार राहें फिल्म आई थी जिसमें चले बजाते सीटी ये गीत है, आप उसे सुन सकते हैं। अमानत फिल्म में गाना है साइकिल पर हसीनों का, हसीनों की टोली, जो हमने आपको सुनवाया भी। और एक फिल्म आई थी बेवकूफ, तो उसमें है मछले है तो साइकिल। जी हाँ, भाभी फिल्म में तो चांदी की साइकिल सोने की सीट थी। मस्त कलंदर में भी गीत था चल मेरे दिल ले चल। और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी सगाई, जिसमें गीत था एक दिन लाहौर की ठंडी सड़क पर। अकेली मत जाइयो फिल्म में ये साइकिल का चक्कर, न जाने कितने सारे गीत हैं जो साइकिल पर फिल्माए गए थे और हमें आज भी प्रेरित करते हैं कि साइकिल है तो आपके सपने हैं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, साइकिल यातायात का बहुत ही बेहतरीन साधन है, ना डीजल ना पेट्रोल, सेहत भी बनी रहती है, प्रदूषण भी नहीं फैलता, पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। तो क्यों ना आज साइकिल डे के दिन पर ही साइकिल पर घूमा जाए, एक साथी ढूंढा जाए और साइकिल का पैडल जो है वो घुमाया जाए और
0: हैंडल पकड़ा जाए,
1: बिल्कुल,
0: और सीट पर बैठा जाए। और साथ ही आपके साथ है सोफिया, तो चलिए हम अपनी साइकिल को लेकर चलते हैं, हाथ आजमाते हैं, गिरेंगे संभलेंगे, जीवन का संतुलन
1: बनाएंगे
0: जी।

0: चलिए श्रोताओं, हमने तो अपनी साइकिल निकाल ली है और आज एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं, साइकिल पर सैर करने वाले हैं। आप भी अपना ख्याल बताइएगा, अपनी साइकिल के करीब जाइए और एक सुहाने सफर पर आज जाने की कोशिश कीजिएगा। साइकिल दिवस पर आप सभी को हम प्रेरित कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपसे अब लेते हैं इजाजत। तो गुलनाज खान और
1: सूफिया खान को दीजिए।

0: ये FM सन सिटी चैनल है, लीजिए सुनिए राजस्थानी कार्यक्रम मरुधरारा गीत।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।

आलोक धुन इथे मन मोहनी है। आलोक धुन बाज तो ही सगड़ा ने ठा पड़ जावे है कि एफएम सन सिटी माते शुरू वेगो है मायड़ भाषा रो समर्पित कार्यक्रम मरुधरा रागी।

जेठ तपे और बावड़िया नीर भरे भरपूर जेठ तपे और बावड़िया नीर भरे भरपूर धनी धोरे देश रो इनसु होवे नूर देखो भया की जेठ रो महीनो चाल रियो है गर्मी हागेड़ी पड़े है मरुभूम तप री है सूरज भगवान आग उगल रिया है और लोग दिन में घर सु बारे निकलनी बंद कर दियो है और ऐड़े में पंखा कूलर भी जगह है काम नहीं करे है तो लोग कह रिया है कि ठंडक कठे पड़ी है ऐड़ी गर्मी रेमाए तो ऐड़ी उमस भरी गर्मी में ठंडक भाया बावड़िया री गहराई में है पानी री आगत घणी जोधपुर री शान पानी री आगत घणी जोधपुर री शान बावड़िया री कोतरणी मरुधर्रो सम्मान मरुधर्रो सम्मान देखो भया कि पुराने बखत में जद गर्मी मरुधरारी धरती ने तपावती तद जोधपुरी ऊंची हवेलियां पानी ने तरसती तद अठेरी बावड़िया इन नीली नगरी री प्यास बुझावती आपणो और जोधपुर जिनने दुनिया आज ब्लू सिटी कहवे है भारतवर्ष सूर्य नगरी कहवे है आपा नीली नगरी कहवा हां और पुराना लोग इनने जोधाणो कहवे है भाया भाया अठारी धरती किणी टेम सूखी जरूर ही पण अठारह वाशिंदा और अठारह राजा महाराजा जगहा वे पानी री एक एक बूंद री कीमत

जानता हा। इन वास्ते हर काल खंड में हर शताब्दी में 18 राजा महाराजा अठेताई की उणारी जी की महारानिया ही वे भी जोधाने री रियाया रे वास्ते 18 जनता रे वास्ते पानी री कमी दूर करण सारू बावड़िया बनवाई जको इन धरती ने नुवो जीवन दियो। आज तो भाया आपने घर ताई पानी री पहुँच है, जिन दिन पानी री बारी वे उन टेम आपे नल खोला और पूरे घर रो पानी भरला। पण पुराने टेम तो ए बावड़िया ही आपने पूरा घर री तीर बुझावती ही। इन वास्ते ए जोधाने री बावड़िया सिर्फ आपने वास्ते पानी रो कुंड कुनी है, बल्कि ए तो आपने विरासत री धड़कन है। चाहे भले आज आपा इनने बिसराई दिया हाँ। तो भाया आप रो पसंदीदा हिवड़े बसियो मायड़ भाषा ने समर्पित राजस्थानी भाषा रो लूंठोर रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत जोधाने री बावड़िया री गाथा कहव तो है और साथ ही राजस्थानी लोक गीता सु इनने परवान चढ़ाव तो है। कार्यक्रम रो आज रो नुवो अंक लेर हाजिर हुयो हूँ मैं इन संगीतमय रथ रो सारथी और आप रो दीवानो दोस्त बलवीर। मैं हूँ छोरो जोधपुर रो। आप सगड़ा हितालु श्रोताओ ने सीर का साइनो ने नया नवेलो ने और बड़ा बढ़ेरो ने मारा राम राम। आज रे कार्यक्रम में आपने सैर करामा जोधपुर रे गलियारे नीचे छिपियोड़ी उन खजाने री जिनरी कारीगरी देखण सारू लोग आवे और जब देखे तो बस देखता ही रह जावे। तो इन सारू बने रहो एफएम सन सिटी माथे और सुनता रहो जोधपुर छोरे बलवीर ने। अब आर तो देखो कि एक लोक गीत लोक कलाकार कौन है आप आवाज सु पहचान सको हो।

0: शालीनता है जिसकी शान,
1: यहाँ पे सब शांति शांति है।
0: सौम्यता है इसकी पहचान,
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी।
2: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: FM सन सिटी रे इन आंगणे आप सुन रिया हो मायड़ भाषा जन जन ताई पुगाव तो, मायड़ भाषा री उड़खाण कराव तो, आप रे हिवड़े बसियो राजस्थानी भाषा रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरा रागी जोधपुर छोरे बलबीर रे साथे। आज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं भाया आपने जोधाणे री ऐतिहासिक विरासत बावड़िया री, जको पुराने बखत शहर री जीवन रेखा ही लाइफ लाइन ही। देखो भाया कि आपा जोधपुर में रहवा और अठारे बावड़िया री सैर नी करी ए आपे नी देखी तो सही मायने में आपे जोधपुर ने करीब सु नी देखे भाया। कर आपा एंट्री बात पर उनसु पहला करा आप रो स्वागत नंदन वंदन अभिनंदन हमेशा भात मारे अंदाज में। आवो सा विराजो सा, आवो सा विराजो सा, थाने आवण सु मारी ओड़ी उखिलगी। FM सन सिटी रे आंगणो आज धन्य होयो जा थाने चरणारी रज खिलगी। और आप रो स्वागत करा हाँ ढोल थाली रे साथे आपने बधाने लेवा तिलक करने लेवा।
4: आपका अपना
3: अरे

इन ढोल थाली रे साथे आपरो स्वागत है और साथ ही आपने था है कि आ ढोल थाली जकी है अपनी एफएम सन सिटी री जकी नारी रतन है उनारे वास्ते है वे घर में जठे भी वे चाहे वे झाड़ू कटको करे बासन बर्तन करे बड़ा बुजुर्गारी सेवा करे या पछे आपरे घर में कोई दूजो कामकाज करे आपरी रसोई में खानो पकावे की भी कामकाज करे उनारे कहनारे कने आ ढोल थाली जकी है बाजती रहे है एफएम सन सिटी चैनल रे माते मरु धरारा गीत गूंज तो रहे है तो थोड़ी एक जेज आप घूमर घाल लो और आपके साथ

देखो कि घूमर घालता घालता तो देखो कि हमें सांस फूलन लागी है। अबे पगलिया ने थामा और कार्यक्रम ने धके बधावा। करा बात जोधपुर रे उन अनमोल थातीरी जो को पुराने बखत में जोधाने री तीर बुझावती ही। देखो भया कि अपने जोधाने शहर रे भीतरी इलाका में भीमजीरी हथेरे रास्ते सु थोड़ा आपे धके बदा तो एक घनी पुरानी बावड़ी है जिन्हें तापी बावड़ी आपे कया करा हा। बड़ेरा बतावे है भया कि अपने जोधाने राही व्यास परिवार रा गिरधरजी व्यास हा जका जोधपुर रियासत रा दीवान हा। उनारा छोटा भाई हा नाथोजी व्यास। वे आपरे पिताजी तापोजी री याद में तापी बावड़ी रो निर्माण करवायो हो। और भया वो बखत हो 2 नवंबर 1618 ईस्वी रो। भया तापी बावड़ी रे बनन में करीब 4 साल लगा और उन बखत 71,000 रुपयो खर्चो आयो इन रे बनावण में। अपना बड़ेरा बतावे है आपे हथई माते बैठा जद। 3 मंजिला इन बावड़ी में भव्य नकाशीदार खंबा है और कलात्मक पौड़ा है और करीब 250 फीट लंबी और इतनी गहरी है और इन रे बारिशू चौड़ाई जी की है वह 40 फीट है। इन रे स्थापत्य कला तो भया देखण लायक है और इतिहासकार मोहता नैण सिरे अनुसार उनारे मुजब आ तापी बावड़ी 60 मिनका जीती गहरी है। मतलब के 6 फीट रो एक आदमी वे तो 60 आदमी जितनी गहरी यानी कि 360 फीट गहरी तापी बावड़ी है मोहता नैण जी रे मुजब। मोहता नैण सी अपने 18 इतिहासकार हा। रियासत काल में तापी बावड़ी शहर री प्यास बुझावती ही और भाया तापी बावड़ी रे बढ़िया रे पछे एक कहवत चालती आ रही है आज तई चाल रही है अपने जोधाने में कि तापी बावड़ी और नीमलो कुओ नी देखियो सो जीव तो ही मुओ है कि नहीं। इन्हीं तरिया भया रानीसर पदमसर तालाब रे नीचे कानी एक बावड़ी है जिन्हें चांद बावड़ी आपा कया करा हा। इनरो निर्माण राव चुड़ारी सोनगरा रानी चांद कवर करवायो हो। इन वास्ते इनने चांद बावड़ी कहवा हा और चांद कवर रे नाम सु आ चांद बावड़ी जानी जे है। भया इनरो विधिवत स्वरूप 1645 में जनता रे सामी आयो हो जद भया रानीसर तालाब लबालब वेजा बिरखा में भर जावे तद उनरो पानी अपने आप चांद बावड़ी में आ जाया करे है। और भया पहलारा मिनख जकाहा वे चांद बावड़ी रे पवित्र पानी सू भगवान रो जलाभिषेक करता हा। पुराने टेम जोधाने री जीवन रेखा ही चांद बावड़ी और आज भी अपनी संस्कृति री गवाही देवे है चांद बावड़ी। भया ए जोधाना री बावड़िया मरु भूम जको है इन रे सिनारे इतिहास में ओ एक मोटो योगदान है बावड़िया रो क्योंकि बावड़िया में इतिहास छलके है। भया मैं तो ओइच कहूं कि कठे वे दिन जदे चांद बावड़ी आपानी संस्कृति रो केंद्र होती पर अबे तो आपे इंटरे बिसराई दिया और देखो कि अबार तो बखत है मार चाहे रो चाय टेम माते पुगी नहीं है। आप भी आपे जठे कामकाज करो वठे चाय पियो हो और चाय टेम माते नहीं पुगे आप तई नहीं आवे तो आप ओड़बो दिया करो हो है कि नहीं। तो एक ओड़बो तो बने है तो चाय रो ओड़बो FM सनसिटी रे माध्यम से सगला तई तो बस बढ़िया रहो FM सनसिटी रे माथे और सुनता रहो मरुदरारा गीत जोधपुर छोरे बलवीर के साथ है।

0: अरे FM सन सिटी ट्यून कर।
1: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
2: 102.1 FM सन सिटी जोधपुर शहरी धड़कन जठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। अब आर सुन रिया हो मायड़ भाषा रो सजीव रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत, जिन्हें आप सुनिया करो हो भाया हर बुधवार दिन सुबह 10 बजे से लेर 11 बजे तक पूरे एक घंटे। इनरो आनंद आप उठाई रिया हो जोधपुर छोरे बलवीर रे साथे। आज कार्यक्रम में बात कर रिया हां भाया आपने जोधाणे री ऐतिहासिक विरासत बावड़िया री, जको पुराने बखत जोधपुर शहर री जीवन रेखा ही। देखो भाया कि इन मरुधर री रेतीली धरती में पानी रो हर टीपो मोती झड़ो है भाया। बावड़ी एक सीढ़ीदार बेरोई कोनी है भाया, आ तो कला रो एक अद्भुत नमूनो है। विचार करो के आप आज सू सैकड़ों साल पहली राजा महाराजा री टेम बिना बिजली और बिना क्रेन रे अपने 18 शिल्पकार जमीन रे सैकड़ों फिट नीचे जोधाणे री बावड़िया बनाई। जूं के अपने 18 खरबूजा बावड़ी है जको सूर सागर मंदिर रे बारे बनियोड़ी है भाया। और इन बावड़ी रे जिकी आप बनावट है इतनी शानदार है भाया के आप देखता ही रह जाओ। आपने शहर री आ खरबूजा बावड़ी जिनरो नाम सुनतो ही जीभ रे माथे एक मिठास सी आ जावे है कि नहीं, क्योंकि इनरो पानी खरबूजा जड़ो मीठो हो और ठंडो हो। उन टाइम जद पानी भरण सारू जावती पणियारिया उन जमाने में मारवाड़ में जद सूरज भगवान आप रो कहर बरपावे हागेड़ी गर्मी पड़े तद इन बावड़ी रो शीतल जल जको है आज भी जोधाणा वासी रे मन में तरावट भर देवे है। बड़ेरा बतावे है भाया कि इन ऐतिहासिक खरबूजा बावड़ी रो निर्माण मारवाड़ रा शासक राव मालदेव जी होया हा करीब 1531 ईस्वी सुलेर 1562 ईस्वी ताई वे राज करियो मारवाड़ री गद्दी माते। उनारी झाली राणी स्वरूप देव इन बावड़ी रो निर्माण करवायो हो। आ बावड़ी जोधपुरी परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली रो एक सुंदर उदाहरण है भाया।

और भया आज जोधाने री युवा पीढ़ी 18 मोटियार 18 कला प्रेमी इनरी दीवार रे माथे ऐतिहासिक मारवाड़ी कलाकारी उकेरी है जो को आज भी पर्यटक जिका आवे सैलानी जिका आवे परदेसी पावना जिका अपना ठावे वे इनने देखने आकर्षित हो जाया करे है और उन्होंने सेल्फी लेवन सारू मजबूर करे है भया वा कलाकारी इनमें भूमिगत जल प्रभावित विया करे है ओ आज भी इनमें पानी री जगी धारा है बड़ेरा बतावे है कि अविरल धारा बही रही है आज भी इनरे माए अपने मारवाड़ री माटी में पानी री कदर की कर होवे है इन बात री साख है ए जोधाने री बावड़िया। अब देखो भया कि अपने शहर रे त्रिपोलिया बाजार में एक बावड़ी है गोविंद बावड़ी जिन्होंने आपे गोरिंदा बावड़ी कहया करा हा जबान अपनी आम जबान रे माए आ बावड़ी भी शहर रे भीतरी इलाका री तीर बुझावन री ताकत रखे है भाया इन रे भी स्थापत्य कला देखण लायक है 18वीं सदी में बनियोड़ी इन बावड़ी में पत्थर माथे यानी कि भाटा माथे नकाशी रो काम और बावड़ी में पानी की गूंज और ऊंडी सीढ़ियां सीढ़ियां यानी कि पगोतियां देख रही हूं लागे है भया कि साक्षात इतिहास उबो है इन बावड़ी रे माए पुराने टाइम इन रो पानी अमृत सु कम कोनी हो तो हो भया एक ऐतिहासिक जल संरचना गोरिंदा बावड़ी जोधाने शहर री पारंपरिक पानी रे संरक्षण में पीवन रे पानी ने भेड़ो करण में इनने इकट्ठो करण में आपरी महत्व भूमिका निभाई है कि नहीं भाया आज आपा घरी दो चार सीढ़िया चढ़ला तो अपनी सांस भूल जाया करे है पर आपने बढ़ेरा री सोच देखो कि बावड़ी में नीचे जी का पागुतिया बनाया उन रे सारे जब नीचे उतरा तो तापमान गिर जाया करे है गर्मी कम भे जाया करे है और एकदम नेचुरल इस यूं बढ़िया हवा जकी है बठे आपने मिले है आपने पुरखारी आपने बढ़ेरारी दियोरी अनमोल धरोहर है ए बावड़िया बावड़े री बात आपे कह रहा पर अबार तो सुनता रहो मरुधरारा गीत जोधपुरी छोरे बलवीर रे साथ है नुवे जमाने रो लोक गीत फ्यूजन रे साथ है घणो पुराणो तो नहीं है पर देखो कि नए जमाने रो है सेंट रे साथ है

0: अरे एफएम सन सिटी ट्यून कर।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
4: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
5: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
6: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
7: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
8: अरे कहां जा रहे हो तू?
9: अरे जा कहां रही हो, सवारियां छोड़ के आ रहे हो?
8: तो इंजन बंद कर, गाना बहुत बढ़िया आ रही है।
10: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।

102.1 FM Sun City, जिन्हें आप ट्यून इन करियो हो आपके मोबाइल और रेडियो सेट माथे और दूर दराज इलाका में और सात समंदर पार न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से श्रोता सुनिया करे है और आप रो मनोरंजन करिया करे है सुबह सु लेर रात ताई आप रो अपनो रेडियो चैनल FM Sun City जठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन अब आर सुन रिया हो मायड़ भाषा में बात बंतल कर तो मायड़ भाषा नई पीढ़ी री जबान ताई लाव तो लोक रंजन रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत सुन रिया हो आप जोधपुर छोरे बलवीर रे साथ है आज कार्यक्रम में बात कर रिया हां आपाने जोधाने री ऐतिहासिक विरासत बावड़िया री जो को पुराने बखत शहर री जीवन रेखा ही भाया आप जोधपुर घूमो तो सिर्फ महल माड़िया और गलियां ही कहीं देखो कदई परिवार रे साथे टाबर टूबर रे साथे जा रे अठारी बावड़िया भी निहारो भाया इतिहास री गवाही देवती सजीव और अडीक आज भी उबी है और आपने शहर री एड़ी एक धरोहर है भाया अनारा बावड़ी जको मेहरानगढ़ री तलहटी में बनी ओड़ी है देखो भाया कि जोधपुर महाराजा गज सिंह जी प्रथम जगह 1619 लेर 1638 ताई मारवाड़ री गादी माते राज करियो उनारी लाडली ही अनारा बेगम जिनरो दरबार रे राजकाज में भी मोटो असर हो उनरो प्रभाव हो और अनारा बेगम रे प्रभाव रे कारण ही महाराजा गज सिंह जी प्रथम च कहा वे आप रे बड़े राजकुंवर अमर सिंह जी राठौर री जगह जसवंत सिंह जी ने आप रो उत्तराधिकारी चुनियो हो भाया इन अनारा बेगम रे नाम सुइज अनारा बावड़ी है और आ 17वीं शताब्दी में बनियोड़ी है इन बावड़ी री पागोतिया और उन माथे उकेरी नक्काशी आज रा इंजीनियर जका है वे भी देखे तो अचंभित वे जाया करे है इन बावड़ी री वास्तुकला जिनरा डांगड़ा और गूंजता भूंगड़ा आज भी सैलानिया ने आकर्षित करे है ओहो, मैं तो भूल गो कि मोटियारा ने समझ में ही नहीं आई है कि डांगड़ा और भूंगड़ा काई वे है भाया डांगड़ा यानी कि सीढ़ियां पगोतियां और भूंगड़ा यानी कि ए अंडरग्राउंड पानी रो चैम्बर इन बावड़ी री हालत भाया आज थकी थकी सी है थाक्योड़ी सी लागे है पण भाया जद सावन में पानी री फुहार पड़े तो यूं लागे है कि साक्षात थार रे मरुस्थल में जल देवता निवास करे है और आप आज पानी री किल्लत झेला हाँ आज रे जमाने में जना आपने याद आवे है कि आपना बढ़ेरा बावड़िया ने बनान आपने माते कितो मोटो उपकार करियो हो अबे इनने सहेजन राखन री बारी आपानी है इनी क्रम में अब बात करा भाया उन बावड़ी री जको प्राचीन तो कोनी है पर जा घणी पुरानी भी कोनी है पर आधुनिक युग में जल संरक्षण रो एक बेमिसाल उदाहरण है हासा मैं बात कर रही हूँ चित्तर पैलेस यानी कि उम्मेद भवन री छाव में बनियोड़ी बिरखा बावड़ी री उम्मेद हेरिटेज टाउनशिप में बनियोड़ी इन बावड़ी ने कोई राजा महाराजा कोनी बनाई भाया वा उन जमाने री बनियोड़ी कोनी है भाया आ तो आज जमाने री आधुनिक जमाने में बनियोड़ी है और इन रो ढांचो उन युग रे स्थापत्य कला सो भी फूट रो है इन बावड़ी री जिकी डिजाइन है वह आर्किटेक्ट अनु मृदुल डिजाइन करी ही और वे इन तरीका सु डिजाइन करी कि बिरखारो एक एक टिप्पो यानी बिरखारो जद बरसे तो उन एक एक बूंद जकी है वह इनमें जार जमा भेजा वे इन बावड़ी में इन कारण है इन रो नाम बिरखा बावड़ी धरीजियो है भाया आ करीब 625 फीट लंबी है और 60 फीट गहरी है आ करीब 2008-09 में बनी है आ बावड़ी और इन रे बनावण में जितो खर्चो आयो भाया उन रो भुगतान अठारी कोई एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी जकी है वह उन रो भुगतान करियो हो 2008-09 में बनी आ बिरखा बावड़ी साल 2010 में इन बावड़ी ने आर्किटेक्चर अवार्ड

भी मिलियो हो। आ नई बनी बावड़ी खाली बावड़ी को नहीं है भाया, पानी रो संचय नहीं करे भाया, बल्कि आ पानी मरुधर री विरासत ने भी जीवंत रखे है कि नहीं। तपती धरा में जठे पानी री एक एक बूंद री कीमत है, वठे अपना पुरखा जगह कमाल री इंजीनियरिंग कर भावड़िया बनाई। कितो मोटो काम करियो, जिन जमाने में ना क्रेन ही ना बिजली ही, हाथ सू आप परिश्रम सू ए बावड़िया बनाई, पग पग बावड़िया बनाई।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना एफएम सन सिटी।
2: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: लोक रंजन रो लूंट और रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत आप सुन रिया हो एफएम सन सिटी चैनल माते। कार्यक्रम रो आज रो नुवो अंक लेर हाजिर होयो हूँ मैं आप रो दीवानो दोस्त बलवीर। मैं हूँ छोरो जोधपुर रो। आप चाहे ट्रेवल करो या पछे आप रो काम काज करो मरुधरारा गीत आप रे काना रे कने गूंज तो रहवे है। मायड़ भाषा ने समर्पित इन कार्यक्रम में आज बात कर रिया हाँ अपने जोधाने री ऐतिहासिक विरासत बावड़िया री जो को पुराने टेम शहर री जीवन रेखा ही। देखो भाया कि पुराने जमाने में जद लुकाया इन बावड़िया सू पानी भरन आवती तो आपरे सखियारे साथे हसी ठिठोड़ी करती, आपरे सुख दिखरी बाता करती, उनासु बतियावती, मिल रे लोक गीत गावती, तो भया यात्रा करता मुसाफिर अठे आराम कर लेवता, थोड़ी एक जेज रोक रे विश्राम करता इन बावड़िया रे माथे, ए सामाजिक केंद्र ही बावड़िया। अब देखो के जोधाने री पुरानी राजधानी मंडोर है, जटे है मीठे पानी री बावड़ी, नाम है सुमनोहरा बावड़ी। इन रे बारे में बड़ेरा बतावे है भाया कि इन बावड़ी रो निर्माण विक्रम संवत 742 में, मतलब कि 685 ईस्वी में चणाक रो बेटो माधु करवायो हो भाया। और आ बावड़ी पहाड़ी ने काट ने अंग्रेजी वर्णमाला जक है उन रे माए एल अक्षर है उन रे आकार री बनी उड़ी है। भाया इनरे ऊपरी हिस्सा में एक शिलालेख लागियोड़ो है जिनरे माते भगवान शंकर और अष्ट मातृकामा यानी कि माता जी विरी जिकी है उनरी मूर्तियां उकेरियोड़ी है। इन बावड़ी रे बारा में घणखरा लोगा ने ठा कोनी ही आ जानकारी आपते पुगाई हां। और यूं भी देखो कि ओ मरुधरारा गीत कार्यक्रम जो को है ओ हमेश नवी जानकारी आपते पुगाए करे है, नवी जानकारी रो भी कार्यक्रम है, आपने ध्यान होमो चाहिए। इन्हीं तरिया भाया देखो कि महाराजा जसवंत सिंह जी री जिन टेम उनारो कालखंड हो, जिन टेम वे अठे राज करिया अपने मारवाड़ री गादी माते, उन टेम त्रिपुड़िया बाजार रे बीच में एक बावड़ी है उन टेम री जिन रो नाम है धाई बावड़ी। विक्रम संवत 1716 में बनी आ प्राचीन बावड़ी गोराधाय री याद में बनी उड़ी है भाया। गोराधाय इना ने तो कोई भूल ही नहीं सके है। गोराधाय उन बखतरा तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह जी री धाय थी और वे कुंवर अजीत सिंह जी ने उनारे बाल्य अवस्था में मुगल शासक रे चक्रव्यूह सु बचावण में आपरो सहसु मोटो योगदान दियो हो। और उनारे इन योगदान ने तो अपनी अठारी माटी और मरुभूम भुलाई नहीं सके है। उनारी याद में निर्मित बनियोड़ी आ बावड़ी आज भी अड़ीक उभी है और इनरो अस्तित्व आज भी कायम है भाया। और देखो कि नारी शक्ति की पूजा तो हर कालखंड में होती आई है और इनरो उदाहरण है आ धाई बावड़ी। इन्हीं तरिया अपने जोधार में जो को है औरों कई बावड़िया हैं भाया, जो के चांद पौड़सू आपे सूरसागर जान वाले रास्ते कानी चाला तो डावा हाथ कानी एक पौड़ रे माए बावड़ी बनियोड़ी है जिनरो नाम है नई बावड़ी।

एक रघुनाथ बावड़ी है जो चांद पौल सू बारे निकल तो ही डावे हाथ कानी रास्ते में बनी उड़ी है। महाराजा सूर सिंह जी सूर सागर महल में पानी री सुविधा रे वास्ते बावड़ी बनवाई ही, जिन्हें सूर सागर बावड़ी आपे कह रहा। जालब मोहला में है जालब बावड़ी, हाथी बावड़ी है, ईदगाह बावड़ी है, नई सड़क बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी, राम बावड़ी, नैन्सी बावड़ी, राजा रामरी बावड़ी, चेतान्यारी बावड़ी, शिव बावड़ी, ऐडी कई बावड़ियाँ अपने भीतरी शहर में हैं भाया। अपने मारवाड़ी धरा में जान फूकती ए बावड़ियाँ 18 राजा महाराजा 18 राणियाँ और 18 लोगा रे दियो एक नुवो जीवन है इन धोरा धरती ने ए बावड़ियाँ। अपने बड़े रारो आशीर्वाद है ए बावड़ियाँ। इनरे साल संभाल करनी अबे जिम्मेदारी आपानी है, आ विरासत बचाए राखन की जिम्मेदारी अबे आपानी है। आज रे मोटियारा री है, आज रे युवा पीढ़ी री है, आज जिम्मेदारी आज री पीढ़ी री है कि नहीं भाया? तो कदम बढ़ावनो अपने हाथ में है। आपे इन बावड़िया री साफ सफाई करने आपे पीवन रे पानी इन मु निकाल सका हाँ। बस जरूरत है दो कदम चलन री, हाथ सु हाथ मिलार इनरी सफाई करन री और इनरे जी को है साल संभाल करन री।

आप सगला श्रोतावरो धन्यवाद आभार एफएम सनसिटी पूरी टीम री तरफ सु कि आप इन कार्यक्रम ने घणो पसंद करो हो आपरे हेवड़े बसायो हो और आपरे पसंदीदा कार्यक्रम री सूची में सेसु ऊपर राखो हो और आपरे परिवार और मित्र मंडली रे सागे बैठने इन कार्यक्रम रो आनंद उठाया करो हो। अबे कार्यक्रम रो टाइम अटे पूरो वेगो है, चालता चालता ओइज केऊं कि उतरे सीढ़ी बावड़िया जठे मिले जलधार, उतरे सीढ़ी बावड़िया जठे मिले जलधार, मरुधर री उजल छवि कला तणो भंडार। अबे जोधपुर छोरे बलवीर ने दिराओ सीख, राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत। यह FM सन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनिए रेडियो रेस्टोरेंट।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: आप सुन रहे हैं FM सन सिटी।

जी हाँ, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है, ये दिल का मामला है और दिल ही समझता है। भाई साहब, मैं जब भी खाना बनाता हूँ ना तो अंदाजे से बनाता हूँ, सही बन गया तो खाना लजीज, वरना ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि जब तक नमक ना हो सब्जी में स्वाद नहीं आता, और मैं कहता हूँ भैया जब तक जला ना हो तब तक खाना पकाना समझ में नहीं आता। आप सुनना शुरू कर चुके हैं FM Sun City का चटपटा मसालेदार रेसिपी शो रेडियो रेस्टोरेंट, जिसमें खाने की खुशबू होती है गानों के जरिए और जहां हर बात में थोड़ा स्वाद है। मैं हूं इस शो का शेफ, आपका दीवाना दोस्त बलवीर। मैं हूं छोरा जोधपुर का, कहता हूं आपको हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग। और भैया जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। क्या आपको लगता है कि आपकी चाय में चीनी की जगह नमक डालने से स्वाद बदलता है? या फिर क्या आपको लगता है कि प्रेशर कुकर की सीटी का मतलब अलार्म होता है? तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आपकी मम्मी कहती है कि थोड़ा और चख ले बेटा, पता नहीं भगवान ने तुझे स्वाद पहचानने की शक्ति दी भी।

0: भी है या नहीं। और दोस्त लोग कहते हैं कि भाई तू खाना बना रहा है या कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खाकर तो सीधा अस्पताल ही जाना पड़ेगा। तो ये शो आपके लिए है, तो आइए रेडियो रेस्टोरेंट की खिड़की खोलते हैं।
1: की खुली जरा जरा पर्दा सरक गया।
0: भाई साहब, मैंने जैसे ही खिड़की खोली सोचा कि ताजी हवा आएगी, पर ताजी हवा के झोंके के साथ ही पड़ोस में जले हुए पराठों का धुआं आ गया है। मैं जाकर उनकी खिड़की बंद करता हूं, तब तक आप सुनिए बैक टू बैक गाने। तो बस चिपके रहिए अपने रेडियो सेट के साथ और सुनते रहें जोधपुर के छोरे बलवीर को।

0: तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: आप बने हुए हैं FM सन सिटी के साथ।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
1: भाई साहब, डॉक्टर ने कहा कि डाइट पे ध्यान दो। जी हाँ, मैं बिल्कुल डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ और मैंने उनसे कहा कि आज चूरमे में घी ज्यादा डाला है। आप सुन रहे हैं फूड लवर का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट जोधपुर की छोरे बलवीर के साथ, और जब मैं हूँ आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भाई साहब, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, थाली में दाल बाटी चूरमा आ जाए तो दिल बस यही कहता है जीमो सर, टेंशन न तो पछ देखो। भाई साहब, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा अन्न वैसा अन्न। मन होगा हमारा, यानी जैसा खाना खाओगे वैसा ही विचार आएगा। और जब बात हो हमारे राजस्थान के खाने की, तो हमारे यहाँ के खाने में जो कड़कपन है और जो मिठास है वो कहीं और कहाँ। तो साहब, रेडियो रेस्टोरेंट की भट्टी पर एक तरफ दाल पक रही है तो दूसरी ओर कंडों पे सिकी बाटियां शुद्ध देसी घी के पतीले में डुबकी लगा रही है। आज तो एफएम सनसिटी की टीम ने कैलोरी का चश्मा जो है वो साइड में रख दिया है, क्योंकि स्वाद की असली थपकी हमारे यहाँ लगने वाली है। तो चलिए अपने किचन में जादू जगाते हैं।

0: भैया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक लिसनर का फोन आया और कहा कि सर शादी से पहले लगता था कि जिंदगी बड़ी मीठी होती है पर अब तो ये मुझे तीखी मिर्ची सी लग रही है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब ये तो वही बात हो गई कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। लेकिन साहिबान सही मायने में शादी का लड्डू सिर्फ मीठा ही नहीं होता, इसमें और भी कई स्वाद होते हैं। अब आप हमारी दाल बाटी चूरमा को ही देख लो, थाली में तीखी दाल भी होती है, कड़क बाटी भी होती है जो कि अंदर से नरम होती है और साथ में होता है मीठा चूरमा। ये तीनों मिलकर ही तो थाली का स्वाद पूरा करते हैं और अगर रोज हम चूरमा यानी कि मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी और रोज तीखा खाएंगे तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी। ये तीखा मीठा मिलकर ही तो खाने की थाली का जो है वो बैलेंस बरकरार रखता है। इसी तरह मैरिड लाइफ होती है मेरे दोस्त, इसमें भी बैलेंस बना कर रखना पड़ता है। बस एक बात का आप ख्याल रखिएगा, मेरी बात जो है गांठ बांध लीजिएगा कि नेकी कर नेकी और पूछ पूछ। जब आपकी श्रीमती जी तीखी मिर्ची जैसा गुस्सा दिखाए तो आप चूरमे की तरह पिघल जाइए और ये गीत गाइए।
1: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
0: इसलिए भाई साहब खाने की थाली की तरह गृहस्थी में भी तीखापन और मीठापन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अब हमारे रेडियो रेस्टोरेंट की भट्टी का हाल ही बताऊं मैं आपको, तो देखे ना कि कंडे की धीमी आंच पर बाटिया सिक रही है। बाटी आग में सिकती है तभी तो अंदर से बढ़िया बनती है। इसलिए ही तो कहते हैं कि सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। आज की पीढ़ी को तो सब कुछ तुरंत चाहिए, चुटकी बजाते ही कामयाबी और जरा सा संघर्ष आया नहीं कि वो बिखर जाते हैं। लेकिन साहेब जिंदगी भी जो है वो बाटी की तरह है, तब तक स्वादिष्ट नहीं होगी जब तक हम मेहनत और उसको आंच पर धीमे धीमे आंच पर तपाएंगे नहीं। जब बाटी अच्छी तरह से सिक जाती है तभी तो उसे असली घी के कड़ाव में डुबोया जाता है। ठीक वैसे ही, जी हाँ ठीक वैसे ही हम मुश्किलों से तप कर बाहर निकलेंगे तभी तो ऊपर वाला हमारी जिंदगी को खुशियों के घी में सराबोर कर देगा। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं है, अपनी सिकाई पूरी होने देना है। भाई साहब हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, बातें तो बहुत हो गई। मेरी भट्टी में घी खोल रहा है, मुझे उसे संभालना है। आप बने रहे हमारे संग और सुनते रहे FM सनसिटी जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ।

0: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
1: भाई साहब, किचन में खाना बनता है सिर्फ एक कटोरी, लेकिन सिंक में बर्तन ऐसे जमा होते हैं जैसे कि पूरे मोहल्ले की दावत यहीं पर थी। थम्मागणी हुकुम, एफएम सन सिटी पर फूड लवर का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट आप सुन रहे हैं बलवीर के साथ। और जब मैं हूँ आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भैया, किचन में वही रोज का ड्रामा, कभी नमक कम तो कभी मिर्च ज्यादा, कभी गैस पर चढ़ा दूध उफन कर बाहर आने को तैयार रहता है। हर किचन में ऐसी कॉमेडी फिल्म चलती रहती है, तो टेंशन न को लेने का, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ किचन हैक्स हंसी के तड़के के साथ। तो अपने एप्रिन को उतारिए, पर चम्मच हाथ में रखिए, काम आसान हो जाएगा और चेहरे पे स्माइल रहेगी। रिश्तेदार भले ही काम आए ना आए, पर आज का ये किचन हैक्स है वो जरूर काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
2: शुरू हो जा।
1: भाई साहब, जब भी रोटी बेलो तो गोल नहीं बनती, आड़ी तिरछी हो जाती है और घर वाले उसे देखकर कहते हैं कि अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, कौन सा नक्शा बना दिया भाई। और श्रीमती जी है वो ये देखकर कहती है कि कहती क्या है, वो तो शादी के फेरे याद दिलवा देती है कि शादी के फेरे जो लिए वो गोल थे पर रोटी गोल नहीं है। तो भाई साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, रोटी जैसे भी बेली जाए आप बेल ले और फिर धारदार कटोरी उस पर रख कर जोर से दबा दे, एकदम परफेक्ट रोटी बाहर आएगी। और फिर क्या कहेंगे सब,
3: माल है भाई साहब, गोलमाल है।
1: घर में कोई नहीं है, पनीर की सब्जी आप बनाने के लिए उसे फ्रीज से बाहर निकालते हैं, उसकी कटिंग करते हैं तो वो कटने की बजाय चूरा चूरा हो जाता है। तब आप मजबूरी में गाते हैं, तो भैया अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस जब भी आप पनीर की सब्जी बनाना चाहते हैं तो पनीर को फ्रीज से बाहर निकालने से पहले के बाद उसकी कटिंग करने से पहले उसे 10 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में डालकर रख दें, फिर कटिंग करें, पनीर एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल

0: बनेगा, कटेगा और जो है वो क्यूब्स में कटेगा, फिर तो पनीर भी जो है वो भी गा उठेगा।
1: मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
0: भाई साहब, कुछ लोग कहते हैं कि उबले आलू छिलने से उनकी तो अंगुलियां जल जाती है और उनकी तो आधी उम्र गुजर गई ये आलू छीलने में, हाथ जल गए हैं और उंगलियों के तो फिंगरप्रिंट ही खत्म हो गए हैं। और बेचारा मोबाइल फोन के है उड़ता है, भाई साहब मैं फिंगरप्रिंट से नहीं खुलूंगा, आप तो पासवर्ड लगा दीजिए। ऐसे में मायके गई बीवी की जो है वो याद आ ही जाती है।

आप श्रीमती जी के आने का इंतजार मत कीजिए, वो उनको आने में टाइम लगेगा। तब तक आप तो आलू को उबालने से पहले उसे एक गोल हल्का सा कट लगा दो और उबलने के बाद आलू को 10 सेकंड के लिए चिल्ड पानी में रख दो। और आलू जब उसमें से आप निकालोगे तो उसको निकालने के बाद दोनों तरफ से खींचो, फिर छिलका अपने आप ही वहाँ से आसानी से निकल जाएगा। ऐसा निकलेगा जैसे कि आपके पैरों से मोजा। तब आलू भी बड़ा हसीन लगेगा और आप गा उठेंगे।

तेनु दिल दा वास्ता भाई साहब, अब किचन में घबराना नहीं है, सिर खुजाना नहीं है, बस मुस्कुराते रहना है और गुनगुनाना है। तो अभी सुनते रहें FM सन सिटी जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ ढिचक्यों वाले गाने आपके लिए।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
2: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
3: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
4: भाई साहब, जिंदगी में चाहे कितनी ही क्लेश क्यों ना हो, अगर हाथ में बूंदी का लड्डू हो तो जुबान अपने आप बंद हो जाती है। इसलिए टेंशन हो तो उसे तवे पर तलिए, दुखों को मिक्सी के जार में पीस कर चटनी बना लीजिए, और अगर कोई मुफ्त का ज्ञान दे तो उसे कचोरी समझ कर चबा जाइए। और मेरी दादी तो कहती है कि बेटा, मसाले कभी भी नाप तोल के मत डाला कर, क्योंकि स्वाद चम्मच की काउंटिंग में नहीं, बनाने वाले की नीयत और उसकी दिल की गहराई में होता है। और आज जब मैं नाप तोल के खाना बनाता हूँ तो तड़का भी बेचारा हंसता है और कहता है, भाई तू खाना बना रहा है या एटम बम का फॉर्मूला सेट कर रहा है? तो जनाब, अब वक्त हो गया है चम्मच और कढ़ाई को समेटने का, और बर्तन जो सिंक में पड़े हैं वो रो रहे हैं कि कब आकर हमें चमकाएंगे। और उधर जो है

0: चूहे पेट में खली बली पर डांस कर रहे हैं जबरदस्त।
1: तो अभी करता हूँ रेडियो रेस्टोरेंट का शटर डाउन, पर आप अपने दिल का शटर डाउन मत करिएगा, वरना कहीं खुशियों ने रास्ता बदल दिया तो आपके हिस्से में फ्रेंड्स की जली हुई सब्जी की रील्स देखना ही रह जाएगा। पर हाँ, जाते जाते एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। जोधपुर के हलवाई ने कहा है कि जिंदगी में मिठास उतनी ही रखो जितनी की जलेबी में चाशनी, वरना लोग मीठा समझ कर निकल जाएंगे और बाद में बोलेंगे भाई शुगर बहुत बढ़ गई है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह नए एपिसोड में नई बातों, नई कहानी और नए बहानों के साथ। तब तक खुश रहिए, खाते रहिए और दूसरों के फटे में पैर ना डालिए। सायनारा।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं।

0: उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एक अलग जो विद्यालय को दिया गया है, मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट ने किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है, FM बैंड 102.1 MHz पर। दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा यादों की महफिल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजाकर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत

का कार्यक्रम यादों की महफिल में काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

बन के दीवाना।

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताती
2: है हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देवबर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देवबर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

0: डार्लिंग।
1: हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नजरों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमय इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नजर से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमय इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की खामोश भाषा और प्यार की नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह, कश्मकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा, शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगाव हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिखकर देखूं क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इजराहे मोहब्बत होती है। बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो, या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने

किसी और के लिए भी महसूस की हो तो बताइएगा जरूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता अभिनेत्री गायक गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए। तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज किसकी है।

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि ये आवाज मोहम्मद रफी की है। अब ये इजराहे मोहब्बत जो है, आप सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफी की भी आवाज भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज झगड़े से

0: भी होता है. हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं. ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है. एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया. अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है. तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंदी आवाज अनमोल रत्न रफी साहब की है. बिल्कुल सही है. हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दे ना, मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए. अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या ही फर्क पड़ने वाला है. बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं दिखता था. हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते. जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा. यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख ले. पर वह भी एक समय की बात, इतनी कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी. ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते. हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है. देखिए, अब अगर वही है तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी है तो कहना बनता नहीं है. जी चलिए आज. हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई है. जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो. हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें. और एक बार हमने लिखा भी और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा. एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ. तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है. हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे. जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी. वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबस ही अक्स उभर आते थे. फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला.
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है. प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम गणगौर.

0: नूं भी मिलां वाला अपन सिखिया ने परवाह नहीं जकी साइकिल ही तो व्याह ने मैं सोचो क्यों ना एक बार थोड़ी सी कोशिश
1: ट्रायल करियो आप भी
0: तो बस थोड़ी सी ट्रायल करी पर समझ में आया क्योंकि लगातार अगर आप साइकिल चलावा तो ही सही रहे क्योंकि एक लंबो समय हो गया
1: संतुलन बिगड़ जावे
0: संतुलन बिगड़ गयो मारो बिल्कुल बिगड़ गयो बिगड़ जावे नहीं तो इसे ही पता चले कि लगातार आप रोज जी को काम करा नहीं पुनः हाँ। तो ही वो सकलो अपना जो को संतुलन बनोड़ रहे तो साइकिल चलाई को नहीं इतना साल हूं क्योंकि अब आदत को नहीं रही आधुनिक कहने कई यातायात साधन आ गया तो साइकिल छूटती जा रही है तो एक अच्छी चीज तो को नहीं पर थोड़ा सा दुख भी हुई और थोड़ी खुशी यहाँ हुई कि चलो आज ही बहाने थोड़ा साइकिल ने छूर देखी तो जे साइकिल ने छुई नहीं पर मुझे बहुत सारा किस्सा और कहानियां नहीं बचपन वाली याद आएगी
1: तो जरूर बताऊंगा सखिया ना अपना बचपन का किस्सा और खूब सारी बात करा रहा साइकिल।

0: सालों से कोई संतुलन बनोड़ रहे हैं, तो साइकिल चलाई को नहीं इतना सालों, क्योंकि अब आदत को नहीं रही, आधुनिक कभी ने कई यातायात साधन आ गया तो साइकिल जी छूटती जा रही है, तो आ एक अच्छी चीज तो को नहीं, पर थोड़ा सा दुख भी हुई और थोड़ी खुशी हुई कि चलो आज ही बहाने थोड़ा साइकिल ने छूर देखी, तो जे साइकिल ने छुई नहीं, पर मुझे बहुत सारा किस्सा और कहानियां नहीं बचपन वाली याद आ गई।
1: तो जरूर बताऊं ला पास अखिया ना अपना बचपन का किस्सा और खूब सारी बात कर रहा साइकिल से जुड़ी हुई।
0: बिल्कुल, और देखो केवे ने कि साइकिल जी के नहीं महिला और मुक्ति रे दिलाने रे दुनिया रे में सबसे अन्य चीज और सबसे बड़ी योगदान दियो रही है, और आज का विचार है ए सुसान बी एंथोनी रा, तो क्यों ना एक गीत सुना दो।
1: बिल्कुल।

0: पूनम जी दा अनुभव और बात करी तो जीवन में हर एक चीज है जी अपने कुछ ना कुछ सीखा है। बचपन में जब साइकिल चलाऊं था तो बहुत बार है जी का घुटना और कवन कौन है जी की चोटी लुजाया करती। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे समय तो पूनम जी आपा जी टाइम छोटा हाँ तो इतनी तरह तरह की साइकिल है भी कौन मतलब अच्छे से याद है कि किराए रही एक साइकिल ले रहा था अभी मैं एक घंटा वास्ते 25 पैसा या 50 पैसा दिया करता जिकने छोटो सो क्या अध्यो किया करता और बड़ी मुश्किल मतलब रुपया मिलता वह भी पूरे साल में नहीं पे भी नानी रे घर जानता नहीं तो वह नानी बड़ी लाड को डू 25 पैसा है 50 पैसा देता और जिकने मिल जान तो मेरे साथ एक बड़ी सी टोली रहती और मैं यहाँ कोशिश करता कि थोड़ो सो माने भी
1: दो चक्कर माने,
0: माने भी चक्कर लगा दे और सबसे बड़े पीछे जो एरियल हूं तो फिर मत के नहीं मत बैठ पर हाँ। और कहता ले मन थोड़ा सा घुमा दे और अगर कोई ने गिरा देता फिर तो जो चलाना हो तो फिर सामत आ जाती।
1: बिल्कुल सही किया और एक समय साइकिल भी लग्जरी होती टावर छोटा होता तो वे गद्दी पर कोनी पहुंचता तो वे आप कप्पा के वे पेडल माते मतलब कैची चलावे नहीं जो चलाता
0: हाँ तो बिल्कुल पूनम जी आप जी साइकिल चलावा इरा भी तीन चरण होता कि पहला जब सीखता तो कहता अपना जगह बुजुर्ग है या अपन जगह पेरेंट्स अपन सिखाता मामा चाचा भाई ए लोग ही सिखाया करता तो वे कहता ले साइकिल पकड़ और एक पेडल लू मतलब पग ने एक पेडल पर रख और एक पग जो जमीन पर और कई दिन तो अपन भी प्रैक्टिस कराता।

0: बात कहता अबे तू क्रॉस में पग घाल और बिन कैंची बिर बात कहता अबे तू सीट पर बैठ
1: और सीट पर बैठ तो जने भी कोई लारू पकड़ तो अपन विश्वास रहे तो कहां पे साइकिल लारू पकड़ी ओड़ी है जो ही अपन साइकिल आगे आगे बदावता के लारू वे साइकिल छोड़ देता और जो ही अपन ध्यान जातो के लारू साइकिल छूट के आगे ले धड़ा
0: बस तो वो यूं होता ना कि अपन पहले विश्वास हो तो कि अपने आगे कोई है और जी अपने लाग तो कि अच्छा आ साइकिल अपने भरोसे चल रही है तो अपन विश्वास है जो डगमगा जाए तो और आ साइकिल अपन ने वही सिखावे कि विश्वास ने डगमगा होना नहीं चाहिए अगर आप साइकिल पर बैठा हो तो आप खुद साइकिल का इंजीनियर हो
1: बिल्कुल सही क्यों और अपा आज का दिन मतलब साइकिल ने चमकाउनो ही काम करता कि भाई साइकिल भी एक लग्जरी मानी जाती है जो आजकल गाड़ियां ने साफ करा कपड़ों जो साइकिल ने भी कपड़ों साफ करता और विदीची की रिम होती नहीं फिर मैंने रंग बिरंगी पट्टियां और फीता वगैरह लगाता ताकि साइकिल चले जाने बहुत ही पुटरी लगती
0: सही बात है और सबसे बड़ी बात है अगर भी हैंडल पर आगे वाले हैंडल पर छोटे बच्चे ने बैठाने वास्ते छोटी सी सीट है जिकी भी लगाया करता ताकि मैंने पर बच्चों बैठ जाए और लारे है जिकी वही बहन या कुछ कोई भी जी पत्नी वगैरह होती और बैठता और याद है पूनम जी की जब बचपन में मैं कोई मेलो देखने जाऊंता या कोई फिल्म देखने जाऊंता तो साइकिल सारे ही जाऊंता और मना बहुत अच्छे से याद है कि टेंथ और इलेवंथ और ट्वेल्थ का जिकर पेपर हुआ तो सेंटर है जिका स्कूल में नहीं आया करता दूसरी जगह आता तो मारा बड़ा भैया जिका है वे बकायदा साइकिल पर माने बैठा और भी केंद्र पर छोड़ रहा होता और वापिस लेवन ने भी आता
1: बिल्कुल पहले कितना हाँ। लंबो सफर होता तो वो साइकिल में ही तय करता
0: पहले बने यहाँ लाग तो कि मैं ये गार्जियन हूँ तो इन साइकिल पर बैठा छोड़ रहा हूँ अभी और कोई चीज पर मन विश्वास नहीं हो और घनी बार तो यहाँ भी हो तो कि कोई सहेलियां होती वे कहती क्यों ना आप ही पीछे दोनों जने यहाँ क्रॉस टांग कर ले और बैठ जाओ तो भैया ने रिक्वेस्ट करता कि एक मारे सहेली है जिकने भी आज लेट जाओ तो साइकिल होना बहुत बड़ी मतलब बहुत रईसी वाली बात हुई करती
1: बिल्कुल सही कहो और जनकनी पंक्चर हो जाती नहीं आराधना जी तो इस टाइम बड़ी आफत आ जाती साइकिल ने पंक्चर ही दुकान पर ले जाता पर जो को वो पंप हवा भरता नहीं उन टाइम भले हाँ हो जाता पर तो भी चोको लाग तो उन्होंने हवा भरना
0: बिल्कुल पूनम जी जब पंचर की बात की तो बहुत मतलब हाँ सीरी ही बात है कि बचपन में मतलब कोई नाइन्थ टेंथ में ही पढ़ता है तो समझदार तो हाँ बनिया तो पिताजी एक बार क्यों कि भाई साइकिल है जो सुबह सुबह पहुंच रहा होना है तो क्योंकि ऑफिस जाना हो तो 9 बजे निकल जाऊं था तो मैं साइकिल ने पहुंच रही पहुंचते पहुंचते पिताजी ने बोले अंदर की साइकिल की हवा भी चेक कर लिए तो अब हवा किया चेक कर जब बचपन में तो बालपन में तो था कोनी तो वो जो को वोल्टी वो नहीं फिर वो खोल दियो खोलते बाद एकदम जोर से एक आवाज आई पिताजी दौड़ पर आर देखा कि कहीं हो मैं क्यों मैं तो आप रखे ना साइकिल में हवा चेक कर रही हूँ मतलब आस पास में जिक्का भी खड़ा मैं सब जोर जोर हंसन ला गया मैं घटना पूनम जी के यानी आज भी याद जद भी साइकिल देखो तो आज पिताजी तो नहीं रहा पर पिताजी री साइकिल आज भी घर में सुरक्षित रखोड़ी है और भी साइकिल ने देखा तो बाजी की घटना मन है आज भी याद आ
1: बिल्कुल सही क्या आराधना जी साइकिल जी का अनुभव है बहुत खासम
0: तो कोई अनुभव रही है
1: बिल्कुल है हमारा अनुभव बचपन रहा है जब आप क्यों ने अगली सीट जी की छोटा बच्चा वास्ते लगा था तो मैं कई मार दादो साथ आगे बैठ रही कटी कटी घूमन जाती रहती तो कई बार मारो पग जी को नहीं वो साइकिल की ताड़िया में आ जाओ तो बचपन बट रोवन लाग जाती तो दादाजी कोई दुकान वुकान देख बटे मन बैठा था बटे मलम वगैरह कोई लेर लगाता चुप कराता पच मन घर तक पाच ले रहा था
0: और कितना मतलब सुखद अनुभव होता कि आज साइकिल पर घूम रहा है तो बातचीत है जारी रखा ना और सुनाओ एक प्यारा सो गीत

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर गणगौर, और बात कर रहे हैं विश्व साइकिल दिवस पर। तो साइकिल केवल दो पहिया रो साधन नहीं है, वो अपना स्वास्थ्य संतुलन, पर्यावरण संरक्षण और आत्मविश्वास रो प्रतीक है। साइकिल तो देखो हर कोई जीवन में एक बार आपने चलावे ही है, और कई बार तो यहाँ है कि लोग साइकिल पर ही आपको पूरा जीवन जो है चलाता चलाता व्यतीत कर दे। पर कुछ ऐसा भी शख्सियत हुआ करे जिसको साइकिल ने आपको जुनून और आपकी पहचान और आपकी कला है जिकी बढ़ा लिया करे। तो आज आप सागे ऐसा ही एक विशेष अतिथि अपने स्टूडियो में मौजूद है, तो जहाँ हैरत अंगेज करतब और अनोखा साइकिल योगा ने देख पड़ा लोग काफी है जिसका प्रेरणा लिया करे और बहुत सारा रिकॉर्ड है जिसका वे बना चुके हैं। तो आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में गिनीज रिकॉर्ड होल्डर साइकिलिस्ट खीमराज गुजर जी, आप घणे मानसों स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
2: आपने घना घना नमस्कार सगला श्रोता तरफ से और मणिपुर आकाशवाणी टीम की तरफ से। तो खीवरा जी, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दिला दो।
1: मारा एजुकेशन का चौपाशनी स्कूल में भया, मैं करीब 12 साल रोजन पढ़ते आया। तो उठे झीर बाद में मैं पढ़ाई नहीं करी। 12 साल में पहले साइकिलिस्ट हूँ, पहले मैं फुटबॉल खिलाड़ी हूँ।
2: अच्छा।
1: तो दो नेशनल प्ले 66-67 में फुटबॉल खेलिया था।
2: अच्छा, तो साइकिल मतलब फुटबॉल
1: साइकिल में आने रो की कर सोचे आप? फुटबॉल तो एक ग्रुप टीम मैच है, आप 11 खिलाड़ी वेवेन मैन, तो इंडिविजुअल आपकी पहचान बहुत मुश्किल है। पर मैं इस बाद में साइकिलिंग इन बात से चालू करी इंडिविजुअल आपकी पहचान हो सके।
2: अच्छा, व्यक्तिगत पहचान बढ़ाऊंगा।
1: हाँ सर।
0: तो मतलब आप जो को जीवन में पहला प्यार अगर आप कह तो साइकिल ही?
1: बचपन में साइकिल का शौक हो, मैं करीब 4-5 साल रोजाना सीख गया, स्कूल नहीं गया मैंने, पहले साइकिल सीख ली।
0: तो जब आप साइकिल सीखी तो विन समय की कोई एक इसी याद है जी की आज भी आपने याद है?
1: नहीं आई है, वह पया मिलता है आनो दो आनो तो वह साइकिल में जाओ तो बस।
0: अच्छा। तो बेटा जब आपने जी हाँ पया आप बोल रहे हो मिलता, तो विन समय जब आपने पया मिलता साइकिल चलाना था, तो विन समय आप जो पल हो गया लगता आपने?
1: नहीं, आनंद आओ तो मतलब कपड़ा फाड़ जाओ भले दूर में पड़ जाओ तार, पर वो साइकिल चलाना आनंद वो कठिन
0: लगी हो। तो खूब चोट भी लगी करती होगी?
1: बहुत चोट लगी।
0: तो आपने कभी ये नहीं लगी कि नहीं अब साइकिल है जो कि इतना मतलब कष्ट दे रही है तो इन्हें छोड़ देना
1: चाहिए? नहीं नहीं, मन तो और ज्यादा कठिन लगते जन और ज्यादा पट्टी बांधन में चला ले तो कोई चिंता नहीं है।
0: तो आपने शुरू में कोई साइकिल चलाना सिखाई हो या आप खुद ही?
1: नहीं, खुद ही सब काम सेल्फ ही है।
0: जब अपना भी साइकिल से चलाने सीखा।
1: हाँ।
0: तो बहुत ही अच्छी बात है।
2: तो बिल्कुल हर व्यक्ति किनी किनी सुप्रेरणा तो लिए ही करे आगे बढ़ने वास्ते, तो आपने किन सुप्रेरणा मिली इन क्षेत्र में आने री?
1: नहीं, मारे कहे हैं कि मारा जो गुरु है, मैं जो जिन योग आसन करूँ ने पर, तो साइकिल मत में 50 योग आसन करूँ।
2: अच्छा।
1: 10 मिनट में करूँ।
2: अच्छा।
1: तो मैं वन करो 1947 में 1947 में पाकिस्तान आया जोधपुर, तो वह लोग बच्चा ने सिखाया करता मंदिर में, तो मैं वह सीखता मंदिर में जा पर गीता भवन है मंदिर भी में।

0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा मैं प्रेरणा ने दी, तीन चार आसन सीख गया, फिर बाद में मैं खुद ही सेल्फ बढ़ाव तो गया इन महीने।
0: अच्छा, एक तो जमीन पर आसन करना और एक साइकिल पर आसन करना, कितो फर्क, कितो ज्यादा फर्क है।
1: और मैं तो किल्लारी दीवार है इनमें तो करूँ, करीब तीन दफे कर चुका हूँ।
0: अच्छा,
1: 600 फीट है, 300 फीट है, एक पावरगन हिल पहाड़ी है अपन जोधपुर चौपाशनी में, मैं विनमत भी करूँ, रात करीब 60 दफे मैं विनमत कर चुका हूँ।
0: अच्छा, तो वो जो आसन करो आप, तो उन वास्ते पहले कोई तैयारी करता होला या अपना अपने मानसिक रूप से भी तैयार रखना पड़े, शारीरिक रूप से भी तैयार रहना पड़े?
1: विन बात कहें मेडिटेशन और ध्यान और योग में एक्स्ट्रा और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज है ना, पार्ट वाइज करा, जो बॉडी बिल्डर करा है ना, जो करा मैं।
2: तो आपने नहीं मतलब मन में क्या ख्याल हो एक, मैंने साइकिल पर योग करना चाहिए, क्योंकि बहुत अनोखो काम है, आसान काम बोलने,
1: बहुत हार्ड काम है। आज तक कोई सीखने बहुत आया लोग पर कोई सीख नहीं सके, इन वास्ते बहुत लंबो टाइम लगे, एक तो पेशेंस चाहिए आदमी में।
2: अच्छा,
1: थर्ड कोई है नहीं, बच्चा कहे आजकल तो छोटी एज है और सर्टिफिकेट चाहिए मैंने, सीखना मतलब नहीं है।
2: हाँ,
1: तो बहुत सीरियस काम है।

0: ਕਮਾ ਕਿਆ ਜਾਏ।
1: ਮੈਂ ਬਸ ਤੀਨ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਮਾਰੀ ਇੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਔਰ ਬੜਾਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੋ ਕੁਛ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਆਉਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਤਾ ਯੋਗਰੀ, ਤੋ ਇਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਤ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੋ ਉਹ ਕਰਤਾ ਇਨ ਮਤ, ਯੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ 50 ਆਸਨ ਇਨ ਮਤ ਕਰ ਲੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ, ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤ ਮੇਰਾ ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ। करीब आधा घंटा पौन घंटा तो रोजाना इनमें टच में रहा।
0: अच्छा, और कोई अलग डाइट प्लान भी है आप रोहिन वास्ते?
1: नहीं, डाइट प्लान वही है, कम खावा।
0: अच्छा, कम खाओ तो भी मतलब कोई मतलब हेल्दी फूड लेता होला?
1: हेल्दी फूड ही है, कोई विशेष नहीं, दाल रोटी हो जाए और कोई विशेष खीर नहीं है।
0: अच्छा, तो आप अब तक के सफर में आप जो भी प्रदर्शन करे हो जोधपुर अलावा और कौन कौन सी जगह पर आप करे हो?
1: मैं कई देशों में करे हूँ, न्यूजीलैंड में मैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैं दूसरा लोग भी बहुत आवे इनमें, बिलीव इट और नॉट एक अमेरिकन सीरियल अभी में भी मैं हूँ।
0: अच्छा,
1: तो ये जर्मनी में मैं करी हूँ, जर्मनी में मैंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वह लोग टेबल लेन आवे, टेबल एक टेबल अटेंड रखे, एक दूसरी माता करिए फिर मतलब टाइमिंग आदमी खड़ा रहे अगर।
0: अच्छा,
1: तो वह काउंट करे फिर मैं
0: कि आपकी तो टाइम वो कवर कर लिया।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो वो बाहरला देश अनुभव कैडो रियो आप रो?
1: बाहरला लोग योग रा नाम हो इकट्ठा है।
0: अच्छा।
1: साइकिल रा नाम हो तो वन करने खुद करने भी है, BMX है, मैं जिन मत करूँ ना BMX जिसके करीब 12 किलो आवे और एक चक्कर मैंने 140 ताड़ी आवे, स्पेशल साइकिल है।
0: अच्छा,
1: मिले बारू ही मिले।

0: 5 मिनट में भी करूं और 10 मिनट में भी करूं, अलग अलग रिकॉर्ड है माता।
1: तो आप जो को संतुलन बनाओ साइकिल रोपर इरो कई राज की संतुलन एकदम सही बने इरे वास्ते आप कई चीज है जिके करो
0: मेडिटेशन है ध्यान जो है ना ध्यान बड़ी चीज है इनमें।
1: अच्छा तो आप इतना योग आसन वगैरह करो तो कभी कोई दुर्घटना या कोई जोखिम भरी स्थिति भी आई आप रे जीवन में?
0: मतलब आज तक इतना बरसा में कदे ही मतलब मैं गिरिया नहीं हो इनमें, चाहे मैं कितना भी ऊपर चढ़ गया तो कदे गिरिया नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, इंजरी कदे नहीं हुई है।

0: तो आपने पहली साइकिल केड़ी ही और वह कितना में खरीदी है आप?
1: तो मतलब 200-400 रिपेयरिंग ही है।
0: अच्छा,
1: पहले मेरा फादर लान दी मेरे एक साइकिल, फिर बाद में मैं वह गई तो दूसरी ले आया, नहीं चलता रहा।
0: और इन महीने कोई जो आप करतब वगैरह करो तो कोई स्पेशल साइकिल वाला आप
1: रखा? वह स्पेशल है कौन, BMX, अमेरिकन BMX, जिनमें 140 ताड़ी एक चक्कर महीने में।
0: अच्छा, तो मतलब एक जो भी अच्छा साइकिलिस्ट होया करे उनका किन प्रकार की साइकिल होनी चाहिए?
1: साइकिल में बहुत डिफरेंट है, मतलब एक तो स्प्रिंट लगाना हुआ है, एक रोड रेस हुआ है, एक ट्रैक रेस हुआ है, तो हर महीने सब में अलग अलग साइकिल चाहिए।
0: अच्छा, तो आप जो तो इतना साइकिल में समय बितायो तो कभी आप नहीं यूं लागो कि मन है आप हमारी एज की यात्रा है आप रोक देनी चाहिए?
1: नहीं यारो कोई नहीं, मैं तो देखो हेल्थ रहे वास्ते साइकिल ही जिंदगी है। आप अगर साइकिल है तो आप स्वस्थ रह सको, आप 100 साल तक जी सको आराम हो, कोई बगैर बीमारी।
0: अच्छा, तो आप रखने कोई बच्चा सीखने भी आवे?
1: सीखने आवे पर पेशेंस जरूरी है, पर वो इतना तो आजकल री जनरेशन में इतना तो पेशेंस नहीं है।
0: तो फिर वास्ते कहीं करना चाहिए, मतलब आज रही युवा पीढ़ी ने
1: आजकल जनरेशन में है नहीं, थोड़ा दिन आओ, हफ्ता 10 दिन में आवे, क्या मन तो साड़ी बिगड़ दे तो सीख लू मैं, यूं वह नहीं है।
0: बिल्कुल, तो जी आजकल बहुत आधुनिक और महंगी साइकिल होने लगी, तो बड़ा कई विशेषता है और बड़ा महत्व कई है।
1: साइकिल की कीमत आज 1,00,000 रुपयों में स्टार्ट है और 22 लाख तक मिले, और वे सब अलग अलग इवेंट्स रे वास्ते है। कार्बन फाइबर री भी आवे तो 12 किलो री आवे, मार्केट में भी अब लगे में वो करीब 12 किलो री है, 1,00,000 रुपया री साइकिल, तो ज़्यादातर 1,00,000 आस पास ही है, कम साइकिल नहीं आवे।
0: अच्छा।

0: तो आप अबार जी की आपकी उम्र है, तो उन उम्र में भी करतब करने में कोई परेशानी आपने आवे?
1: नहीं, मैंने कोई परेशानी नहीं आवे।
0: कोई शारीरिक, जैसे भाई इन उम्र में तो कई लोग कहे कि माने गोडा दुखे, माने कमर दुखे या कुछ भी परेशानी है बुढ़ापारी, तो आप भी देखो जिन एज रहे महीना बार हो, तो उन टाइम कोई परेशानी आपने हो?
1: मैंने कोई परेशानी नहीं, इन आप गोडा ठीक रहे, अगर कोई गोडा ठीक भी करना है तो वो रोजाना साइकिलिंग करे।
0: अच्छा,
2: तो जी हाँ, अब आप बात कर रहे हैं साइकिल की, साइकिल है जी की बहुत मतलब जीवन रो अपना अनुभव सीखा है, तो आप साइकिल से कहीं कहीं बातें हैं जी के जीवन में सीखी?
1: मैं साइकिल तो बहुत इजी काम है, आप कटे भी करो कोई काम है तो भी आप साइकिल में निकाल सको, कटे जाना है तो मैं तो लोगों ने सलाह दूं सुबह साइकिल ले पर सब्जी मंडी जाओ तो आप इजी वे हो जाए,
0: बिल्कुल सुबह सुबह
1: काम भी हो जाए, घर वाला भी राजी रहे और आप शरीर भी ठीक रहे।
0: बिल्कुल।
2: तो जी हाँ, आप अभी बता रहे हो कि साइकिल का बहुत सारा फायदा हो जा करे, तो आने वाले समय में आप कई योजना है कोई साइकिल नयो लक्ष्य अभी भी आप बाकी है? आप बहुत सारा लक्ष्य तो बहुत पूरा आप कर चुके हो, फिर भी अभी तक आप कोई दिमाग में चल रही है?
1: कुछ रिकॉर्ड है जो हमारे और बनाना है तो वह बना हुआ, लाल काम चालू है, छोड़ा नहीं हाल जब तक कोई रिकॉर्ड नहीं बन जाए नया।
2: बिल्कुल, ईश्वर आपकी कहनी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेला।
0: तो अंत में आप माने श्रोता माने खास कर माने जो युवा पीढ़ी है वेने कही कहनी चावला आपकी तरफ से?
1: बस साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल और तेल बाड़ने की कोशिश कम कम करो, आप जितनी हो सके आप साइकिल चलाओ तो इन्हों का आप शरीर फिट रहे, पूरा घर वाला भी राजी रहे, पैसा कम खर्च हो, तेल बाड़ो तो घर वाला भी राजी है, दो रहा है तेल
0: सही है पेट्रोल में।
2: एक चीज और आपने पूछा कि जी हाँ, तो जब जिज्ञास सलाह दिया बड़ा वास्ता है, तो आज जो छोटा बच्चा है वह मोबाइल से बहुत ज्यादा जुड़ोड़ा रहा है, तो यार वास्ते आप साइकिल के बारे में कहीं क्यों ना चाहो?
1: नहीं, मैंने तो साइकिलिंग ही करनी चाहिए, कम से कम आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आप मोबाइल चलाओ तो घर में बैठा बैठा तो मोटे हो जाओ, पर साइकिल चलाओ तो आप फिट रहो।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई भी अच्छी हो, आप मोबाइल वोबाइल तो अलग बात है, पर घर वाला ने चाहिए घंटा भर बाद ज्यादा नहीं देवे टाइम।
0: पहले गर्मी छुट्टियां में करता पका ही करता कि साइकिल चलाता,
1: पहले तो वही है साइकिल सीखा ला, छुट्टियां आ रही है घर में कटे टूर में जावा ला, कटे बाहर जावता तो साइकिल ही जावता पहले।
0: हाँ बिल्कुल सही किया आप। तो आज सखिया अपने साथ विशेष मेहमान जाने माने साइकिलिस्ट खीवराज गुर्जर, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर, जगह अपने बताया कि एक छोटी सी साइकिल अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों ने बड़ो जीवन दान दे सके है। आप तो साइकिल ने सिर्फ एक सफर रो जरियो नहीं बल्कि आपकी ताकत और कला रो अखाड़ो बना दियो, जुनून हो कुछ करण रो तो इतिहास बिल्कुल अपर रच सका। हाँ, तो उम्मीद है कि आपकी बातें सुनने लोग प्रेरणा ले और आपकी साइकिल री धूड़ जिकी है वह झाड़ने सेहत री तरफ एक कदम बढ़ाई, तो आप रो अनमोल समय आप मान साथे साझा करियो इंद्र वास्ते पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम री तरफ सु और सुनन वाला सगला श्रोता गण री तरफ सु घणो घणो आभार है आप रो और धन्यवाद है।
1: तो हम चाहते हैं हर आदमी साइकिल चलावे और आप आकाशवाणी केंद्रों भी लोगों ने प्रसारण वाइज इस वास्ते ज्यादा से ज्यादा इन्हें जुड़े।
2: धन्यवाद सर।

0: तो पूनम जी आज देखो अनुभवी लोगों सो आप जो साइकिल रो मतलब किस्सा और बातें मैं तो सुने और समझो तो पता चलो कि साइकिल जी है केवल सफर रो भी नहीं है आप बहुत सारा स्टंट कर परा और एक खुद रो नाम कर लेकिन एक बात है चाहे आप कितना भी स्टंट करो जो भी हो लेकिन अनुभवी लोग अंदर में आप ने काम करना है यूं नहीं है कि आप कोई तस्वीर देख ली और बिरे हिसाब आप कोशिश करने लग गया क्योंकि इस तरह से कई बच्चा जी का है बारह वह सोचे कि हाँ मैं लोग भी चलो कोई पहाड़ी पर ले जावा या साइकिल ने सड़क पर है जगह करतब दिखावा तो ये सब चीज़ें गलत भी हो और पूनम जी साइकिल एक ऐसी चीज़ है जैठा एक जमाने में लोग है जहाँ 3 दिन 5 दिन 7 दिन वास्ते अपने शहर में आता और करतब कर अपने दिखाया करता
1: बिल्कुल सही क्या आराधना जी पर कर्तव्य है जिको अनुभवी जी का व्यक्ति हो प्रशिक्षण लेने ही करे जाए करे इन वास्ते आपने भी अगर एडो कोई काम सीखना है तो आप पहले इन चीज रो प्रशिक्षण ले लो और आराधना जी आपने ठाए अलग अलग जिका इंस्टेंट हुए मेरे वास्ते साइकिल भी अलग अलग होया करे
0: बिल्कुल देखो साइकिल भी कई तरह की होया करे
1: साइकिल बात करा नी तो जितने भी ये साइकिल इस्तेमाल करी जाए सब जगह इन साइकिल की बनावट होगी पहिया रो आकार होगी इस्तेमाल करे जाने वाली जगह होगी उन आधार पर ही इनो निर्माण है जिको करे जाए करे अब बात माउंटेन बाइक री तो उबड़ खाबड़ रास्ता जिका हो पत्थर हो पहाड़ी इलाका जट हो बड़े चलावन वास्ते जिकी है वे चौकी रिया करे इनमें झटका कम लागे करे और मजबूत सस्पेंशन और चौड़ा टायर इना होया करे जो बेहतरीन ग्रिप दिया करे और बात करा रोड बाइक री तो पक्की और समतल जिकी सड़का होया करे उठे तेज गति से चलन वास्ते सबसे हल्की पतला टायर और मुड़ियोड़ा हैंडल है जिको याना होया करे है बात करा हाइब्रिड बाइक री तो रोड बाइक और माउंटेन बाइक रो मिश्रण है जो दोनों शहरी सड़का पर और कच्ची पगडंडिया पर आसानी से चलाई जा सके है और इलेक्ट्रिक बाइक जी की होया करे इनरे मायने एक छोटी बैटरी और मोटर लागियोड़ होया करे जो पैडल मारन रे मायने मदद करिया करे और लंबी दूरी पर चढ़ाई करने वास्ते बेहतर होया करे
0: बिल्कुल पूनम जी देखो आप साइकिल का प्रकार बताया और जी हाँ अगर आप बात करें साइकिल तो पर्यावरण संरक्षण में ये बड़ो योगदान है क्योंकि ना तो धुआं निकले ना इनमें ध्वनि प्रदूषण हुआ और साइकिल रखने वास्ते देखो लंबी चौड़ी अपने जगह भी नहीं चाहिए
1: बिल्कुल
0: और साइकिल में देखो ताला भी मारी जाए ठीक है कि कोई अपने चोरी कर नहीं ले जावे तो यह नहीं है कि भी अपन को चोरी कर ले तो पहला पहला तो देखो पूनम जी आप चैन में डाल पर तालो मारा करता फिर धीरे धीरे ज्या ज्या प्रगति हुई तो भी मैं ऑटोमेटिकली तारा जिका लागोड़ा भी आवन लग गया और इन बार जो है 2026 रो जो अगर आप बात करा विश्व साइकिल दिवस की जी थीम है वह है एक हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना कहना मतलब है कि अगर आपने वातावरण ने शुद्ध रखना है पर्यावरण ने शुद्ध रखना है तो अपने साइकिल रहे जो इस्तेमाल करना है और देखो प्रदूषण नियंत्रण भी रहे इसमें ऊर्जा की बचत हुए और टिकाऊ भी है और शहरी विकास में जी साइकिल की भूमिका है इन्हें आरेखांकित है जी कर रही है तो और पूनम जी आपने याद है कि जब साइकिल की शुरुआत हुई तो सबसे पहला जी है साइकिल जिका पहिया जी कहा वह लकड़ी रहा या लोहे रहा होया करा और भी मैं उबड़ खाबड़ जब चलाऊं था तो भी ना साइकिल में कहीं शरीर में कंपन होया करता हूँ और इन वास्ते भी ना बोन सेंकर मतलब अर्थात की हड्डियां ने हिलाने वाली साइकिल नाम दियो गयो
1: और साइकिल से जुड़ी कहावत भी आ सके ने बतावा तो कहावत इन प्रकार है कि

0: साइकिल री सवारी आदि बीमारी टाली मतलब अगर साइकिल आप चलावला नियमित रूप से तो आपने शरीर एक्सरसाइज होवेला उनसे आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनेला तो कोई भी प्रकार की बीमारी है इनसे आप दूर रहोला। और दूसरी कहावत है कि घोड़ा बेच करने साइकिल लेनी गांसी चिंता मेट देनी यानी साइकिल कम खर्चीली और आसान साधन और तालमेल है जिसको दिखाया करे। घोड़ो हो तो उन्हें फिर भी घास चरानी पड़े पर साइकिल ने तो की जरूरत को नहीं है आ तो बस थोड़ी सी आपकी मेंटेनेंस आवे और लगातार चलती रहे।
1: और साइकिल शब्द जो इस्तेमाल जो वो 1860 में है जिको मेरे बाद जो समय मेरे बाद करियो भी पहला जो साइकिल शब्द जो वो इस्तेमाल करियो ही नहीं गयो हो।
0: अच्छा।
1: 1860 तक तो इस्तेमाल शब्द मतलब जो साइकिल शब्द नहीं अपने डिक्शनरी में आयो भी करनी हो। और भारत में पहली बार जी साइकिल है 1890 में मुंबई रामाई जी की सड़कों पर आ साइकिल है जी भागी और 1942 में मुंबई में प्रथम बार आविष्कार जो वो हुए हो।
0: बिल्कुल। और विश्व भर में हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा साइकिलें निर्माण करियो जाए करे और विश्व की सबसे लंबी साइकिल है वह 20 मीटर ही जिन पर 35 लोग है जी को बैठे हैं। और जापान है जी को दुनिया रो पहलो एडो देश है जो साइकिल पार्किंग वास्ते अंडरग्राउंड मल्टी स्टोरी ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम लगाए हो। और साइकिल ही सबसे पहले इंसान ने पया पर सफल सफर करने की आजादी दी थी। डेनमार्क रे कोपेनहेगन में सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली इको फ्रेंडली देश है जी को इन्हें मान्य जावे इन्हें सिटी ऑफ साइकिलिस्ट नाम से भी जाने जाए करे है। और साइकिल का आविष्कार ने जन्म दियो साल 1817 में जर्मनी में बनी एक मैनुअल मशीन ड्रेजिन बिना पेडल वाली दो पहली या साइकिल ही जिन्हें रोड पर चलावन वास्ते पगा सु धक्को मारना पड़ता हो।
1: बिल्कुल। और आपने बताया पूनम जी की जी हाँ पानी में भी नहीं साइकिल चलाने एक अनोखी विधा है जिकने अंडर वाटर साइकिलिंग क्या करें आज की साइकिल बात करें आप प्रतियोगिता वास्ते यो काम में लियो जावे यूं नहीं है कि बच्चा साइकिल ले पर मतलब तालाब में नदी में उतर जावे आ बात नहीं इन वास्ते एक अलग सू एक व्यवस्था की जावे मेरे बाद है जिकी या साइकिलिंग प्रतियोगिता जिकी हुआ करे। और प्रसिद्ध हास्य व्यंगकार जिका आप कहवा पंडित सुदर्शन जी जिकर असली नाम जो है वो है बद्रीनाथ भट्ट बे एक मतलब कहानी लिखी साइकिल की सवारी भी मैं आप राज का अनुभव आ बड़ा ही हंसी मजाक रहा अनुभव आ जिका साइकिल से जुड़ोड़ा हा बे भी मैं मतलब कहानी रमाई है जिका लिखा।

0: तो पूनम जी साइकिल की दुनिया रे अगर बात करें तो साइकिल की दुनिया में जिकी अपने जिकी सखियां जिकी है वे भी है भारत पर भारत रो कोई नाम कर रखे है राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिया महिता मोहन है परणीता सोनम स्वाति सिंह रुचिका सिंह
1: बिल्कुल देबोरा हेरल्ड है वेदांगी कुलकर्णी आशा मालवीय ज्योति कुमारी है रेणु सिंह भी है ये सब साइकिल की दुनिया में मैंने किन किन प्रकार आप नाम है जिनको रोशन
0: बिल्कुल रीतिका बिश्नोई है मंजू कुमारी है सावर्णिका है ये सब जिका है साइकिल रे क्षेत्र में आप जिया खूब नाम करोड़ है और साइकिल रेस ने ओलंपिक खेल के रूप में भी इन्हें बड़ी मान्यता है जिकी दिए रखी है
1: बिल्कुल सही क्यों आराधना जी तो साइकिल जी को है वो रिश्तो अपन साइकिल के साथ बहुत ही पुराना और इन्हें एक सुनहरो सफर आप कह सका हाँ साइकिल के साथ अपना सफर है जी को एक सुनहरो पल हो और रेडियो और साइकिल सफर जी को आप कह वो तो एक अपने आप में अनूठो ही है जब साइकिल चलावा और उन पर रेडियो

0: क्यों डोवे, तो सफर और ज्यादा आसान और आनंदमय हो जाया करे।
1: बिल्कुल। देखो पूनम जी की जिको आप सफर की बात करो ने, तो जब आप छोटा है ने तो आप साइकिलों कई दूर चला जाता, जहाँ मतलब अपनी माँ या अपना घर जगह कहता कि दूध ले रहा होना है या कोई काम वो भेजता, तो यह लगता तो कि आज साइकिल मिली है तो क्यों ना थोड़ा सा एक चक्कर और निकाल आ जाए चुपके चुपके। पर वो चुपके चुपके इतो खतरनाक हो पूनम जी की, अब तो सीसी कैमरा लगोड़ा है, फिर से मैं सीसीटीवी मतलब कैमरा होता भी कौन है भी, मैं भी कहीं हूं तो सीसी कैमरा जो है अपना घर जो अड़ोसी पड़ोसी जिका मतलब अपना परिवार वाला बाण होता बे मतलब बता देता घर में कि आज फलानी गली रे माई आपरे भाई ने साइकिल चलाता देखी, और जे यहाँ खबर मिलती तो मिण से मैं कहूँ तो कि जिको केवल ना हूँ तन पूनम जी विने उड़बो नहीं देता, विने तो कहता अच्छा आप बहुत अच्छो काम करो, और मतलब है कि आप जब घर में आता तो अपने ही दो चार बातें जिके सुनने मिलती, और उल्टा और क्या कहता कि आगे भी थे कदी ने देखो नहीं तो घर में यार सूचना दी, पर आजकल देखो पूनम जी उल्टो हो गयो। तो इस देखो नुकसान भी है कि अगर आप रे बच्चे रे बारे में कोई व्यक्ति आपने घर में यार कोई बता रहे है कि आप रे बच्चों है जो इन तरह की गतिविधियां कर रही है, तो कम से कम आपने पहला माने सामने ने मतलब जवाब देनो पहला अपना वाकई में हकीकत पतो करना चाहिए कि जो को रिपोर्ट ले रहे हो
0: कटे सही सच्ची है तो कि नहीं गलत है। हाँ,
1: तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीजें हैं पूनम जी जो कि जरूरी है, और एक समय हो पूनम जी जब अपने घर में दूध देव नड़ा आता डाकिया भैया आता तो ये दोपहर में अडिक रहती कि अच्छा घंटी बाज गई
0: जो घंटी अब बार अपा गाड़ी पहचान जावा भाई कौन आयो बारे, जो साइकिल जो घंटी बाजती तो पहचान हो जाती कि बारे कौन आया दूध वालो है डाकियो है या अपन घर रही कोई मेंबर है, तो वो पहचान हो जाती घंटी से।
1: और पूनम जी जब आप कॉलेज में पढ़ता तो 93-94 री बात है, विन समय तार री साइकिल आ चुकी है, पहले तो लेडीज साइकिल है, पहले तो वो जो की भारी भारी साइकिल ही कि मैंने हाथ में ले होता तो साइकिल खुद पर ही पड़ जानते, और बहुत बार यहाँ भी हूं तो पूनम जी एक दो बार की मैं साइकिल ने कोशिश करी चलाने नहीं बार लेकिन साइकिल पिताजी ने गिर गई, मैं सोचो पिताजी ने कहीं ठा पड़े क्योंकि हमारे भी चोट लगी होनी, लेकिन पिताजी ने पता चल क्योंकि आज साइकिल जिकी है
0: कोई कोई है,
1: तो मैं मतलब हमारे पिताजी ने पूछो कि क्या पता चले, तो बे कहीं करियो दोनों पगर है बीच में आगे वालो जो कोई चक्कर हो डाल और हैंडल है फट से मोड़ो क्योंकि मैंने पता चल गया कि वो हैंडल जो है वो टेढ़ो हो गया। तो मतलब आप बहुत आश्चर्य बात है कि साइकिल रो भी मतलब कितना तरीके से पता चल जाए कि साइकिल ने कोई ना कोई हाथ है तो साइकिल ने मतलब आप छोटी चीज है जिकी आप नहीं समझ सका कि वो मामूली चीज है, तो तार वाली साइकिल जब पूनम जाई ने तो मैं लोग कॉलेज जाया करता और अपने आप ने इतना रही समझता कि पता नहीं कहीं मतलब हाथ में आ गया एक रेड कलर की साइकिल आगे टोकरी ही पीछे बेग रखन रो भी ए रे लो, तो बे मैं बैठ पर साइकिल पर जान था और सहेलियां रो झुंड जको वो सागे जाया करता।
0: बिल्कुल पहले तो जद भाई परिवार वाला कहता भी है कि अगर तू तो 10वीं में पास होई तो तन साइकिल दे रहा हूं या 12वीं में पास होई या कॉलेज में आउन लाग जई तन साइकिल दे रहा हूं, तो सबसे मोटा उपहार अपन साइकिल ने मानता
1: रहा। अभी आप भी जब अभी बेटे रो जन्मदिन गयो तो आप भी साइकिल दिलाई।
0: बिल्कुल,
1: तो कितनी अच्छी बात है कि देखो आज भी बच्चा जिका है इमें साइकिल रे में रुचि ले रहा है, और रुचि कद ले जब आप खुद रुचि ले।

0: ऐसी है जिकी में साइकिल ने बड़ो एक मतलब मुख्य रूप मान गया। आपने याद है बहुत पहले एक पिक्चर आई सोर मनोज कुमार भी में साइकिल रो सीन है जो काफी लंबो दिखाई गया और साइकिल पर कर्तव्य है जिको दिखाया और एक मतलब घेरो घाल और बे साइकिल पर मतलब कुछ समय है जिको बितायो और वो जिकी पिक्चर है बिसो कई लोग जिका है बहुत काम है जिको सीखियो।
1: बिल्कुल सही कह आराधना जी, बॉलीवुड में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मा रे जमाना सुलेर आज तक बहुत सी अड़ी हिंदी फिल्म है जिनमें साइकिल ने जी को शामिल करिए गया। अब बात करा साइकिल पर बनी हुई पहली फिल्म खंचा जीरी जिकी 1942 में रिलीज हुई थी, तो इन महीने भी साइकिल है जी को अपन देखने मिली थी। पेइंग गेस्ट फिल्म की बात करा तो उन महीने भी अपन साइकिल देखने मिली, अन्नाड़ी फिल्म होगी, पड़ोसन फिल्म होगी, शोर फिल्म की बात करी अपा तो पलकों की छाव में, ऐसा बड़ी फिल्म है जिनमें अपन साइकिल देखने मिलिया करे। शान फिल्म होगी, कटिन कटी जटे हीरो हीरोइन होया करे, वे साइकिल माते गीत फिल्म आता नजर आ जाया करे अपन।
0: बिल्कुल बहुत सारी फिल्में हैं पूनम जी जिके मैं आप दिखाने की दृश्य में जहाँ बात करा सायरा बानोरी की सहेलियां सगे जा रही है, नूतन री आप बात करा देवानंद री कई ऐसी फिल्में हैं जिके मैं साइकिल रो आप देखा, राजेंद्र कुमार या आप कह सको, मतलब इतना हीरो हीरो ने शायद जिका हर कोई है जिका साइकिल ने मतलब काम में लियोड़ा है। और तो जब आप साइकिल की बात कर ही रही हाँ तो क्यों ना कुछ अंश जिका है साइकिल पर फिल्म बस सुना दे सकिया ने।

तो पूनम जी साइकिल की बात करना तो अपना जी की फिल्मा की अगर बात करना तो अपन फिल्म है भी साइकिल अदृश्य जिका है खूब देखने मिले कई हीरो हीरोइन है जिकर हाथ में साइकिल है और बहुत सी

0: तो पूनम जी देखो आज आप विश्व साइकिल दिवस पर आप खूब सारी हज की बातें करी और सबसे बड़ो जी को एक सीख है आई आप सीखे कि साइकिल जी का घर उपयोग करा तो जीवन शैली जी की है बा अपने स्वस्थ और सुंदर रहे वाला। आज रो जी को आप कार्यक्रम प्रस्तुत करो साइकिल पर बात करी इन उद्देश्य वही हो अपन कि साइकिल केवल अपन परिवहन रो साधन नहीं बल्कि अपना जीवन ने सुरक्षित रखने रो भी है हरित भविष्य रो बढ़न रो भी है और इन्हें सागर सागर साइकिल की जिकी मतलब लोकप्रियता है वह कम नहीं होनी चाहिए। बच्चा आने वाला जिका है पीढ़ी वाला तो भाई साइकिल से जुड़ा हो रखे और जुड़ाव तो देखो पूनम जी बच्चे जो छोटो हुए ने तो जन्म लेवे जन्म लेने के बाद वो सबसे पहला अगर कोई चीज सीखे तो वह है साइकिल।
1: बिल्कुल
0: कितनी तरह तरह सुंदर सुंदर साइकिल है जी आप बच्चा ने लार देवा आंगने रमाए और सबसे पहला आपने जीवन रो वाहन जो है वो साइकिल ही सीखे और क्या भी है कि जिको व्यक्ति साइकिल चला लेवे वो हर कोई चीज जिको है हर कोई वाहन है जिको चला लेवे।
1: बिल्कुल सही किया सही आराधना जी। साइकिल रे पया समय री चक्र री तरह होया करे जब पया घूमे तो आप अलग अलग रास्ता रो सफर तय करिया करा और मंजिल तक पहुंचे करा। ठीक उनी बात वक्त रो पयो भी घूमे करे और आप अपनी जिंदगी में अलग अलग सफर तय करता हुआ नया मुकाम हासिल करिया करा। तो आज जी को वक्त रो पयो घूम गयो है अपने समय बता रियो इशारो कर रियो है कि अब कार्यक्रम रो समय भी पूरा होवन लाग गयो है।
0: बिल्कुल तो आज देखो इन कार्यक्रम में आप सगी दो सखियां पूनम देवड़ा आराधना जोशी प्रस्तुति ही राजेश लामरोड
1: और इनके साथ ही आप दोनों सखियां ने दिराओ सीख
0: और संयोजन हो मनीष सोलंकी। तो आप सखियां सीख ले लो पूनम जी और क्यों ना एक सुंदर सा गीत जिको है वो सखियां वाते छोड़ने चला।

0: अभी आपने सुना ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम गणगौर, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि

0: बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेगी।

0: तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
2: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी

0: राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या

0: के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमवाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: तनिया, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
2: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम है सदाबहार नगमे. आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में. शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत.
1: मिलते ही नजर

गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीन गीत आदित्य की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बरात बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखी सहेली।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही

0: थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
1: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देख कर लगा की कल के उत्सव की जो रौनक
0: महक है वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
0: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
1: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता। और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है? जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
0: विश्वास हो, सम्मान हो।
1: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
0: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
1: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन। जी, तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
1: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
0: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
1: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
0: नजर आते हैं
1: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को, कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
1: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं। ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरबी
0: है,
1: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या की बनाए क्या।
0: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पतिदेव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, क्या बना दिया आज मैं नहीं खाता हूँ।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
0: अरे सारा मत बताओ।
1: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों के।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए।
1: जी

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल, तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतः बहुत कम लोग समझ पाते हैं मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल,
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और

0: हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वे कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भैया आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
1: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं, चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें। अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
0: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
1: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
0: इसके लिए रेलवे स्टेशन ऊपर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
1: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल की, रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता, ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं, और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े

0: समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथी कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते

0: नहीं भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घरचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश करती है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं कर सचती समर्थी, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
1: हैं, रख लेते हैं वो
0: जी
1: भी,
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि

0: शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
1: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घट चोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
0: होता है। बिल्कुल, और घट चोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
0: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की. कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे हैं.
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में जब हमें पहली साइकिल मिली थी, तो आज भी भुलाई नहीं भूलती.
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना. और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है.
1: बहुत बड़ी बात. और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल. इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

0: हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
1: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
1: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए।
0: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
1: और हमारे कन्याश्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
0: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते। अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी। उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
1: और भाई ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा दे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
0: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दुपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना। वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
1: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
0: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
1: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ किए जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।
2: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
3: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
4: दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
5: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
4: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे चरण शामिल होते हैं जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
5: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
4: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
5: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
4: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बता

0: आता है हमें जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
1: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
0: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती है महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह से
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई भी है। वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर

0: चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पीसें, पीसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
1: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: में इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी तो
0: कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो है स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की

0: जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहां पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहां पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
1: जी,
0: ये हो गया पहला सवाल।
1: राइट, फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: ओके, अब जो बच्चा एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहां पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहां पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहां पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियां
0: और विविध भारती और अलियावर जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं

0: कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं. क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं. स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें. टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है.
1: रिश्तेदारों को
0: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे, शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है. अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4-5 साल के बाद हो जाता है. तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है. ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं. मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है. शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में. सो देर आर मेनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं. हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा. वो खुद भी hearing impairment है उनको है, and Gallaudet University में डीन रह चुके हैं. So it is possible, everything is possible, but timely और appropriate support system लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल.
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके. सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके. एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं. प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड. तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है. आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन. हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है. अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके. अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल. तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज. बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है. पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है. बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत

क्या बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। तो ये सब एक बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियरल रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट

0: गायत्री हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट, हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें। क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर

0: बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इश्यूज और कंसर्न नहीं आते हैं. पर जहां पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न आएंगे ही आएंगे. इट कैन भी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम. तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है. तो ये कंसर्न जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न बहुत ज्यादा देखे हैं. एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहां पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर है, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में. अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो. फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो.
1: बिल्कुल.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज इफ दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स, ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहां कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा

0: बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा। पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा, और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं, और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहां से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस, जहां पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है, जहां पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है, तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे, उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा। जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है, उतना आउटपुट इज अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी, मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं, तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा, ओके। पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं, या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं, उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं, वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं, ओके। क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है, ओके, बुक इस तरीके से खुलती है, ओके। अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है, तो दैट क्रिया इज डिफरेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं। कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है, और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं, पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे, उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा।
1: तो
0: हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं, तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड, ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, और

0: बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं, अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
1: सी, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग राइट, एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा। ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग, एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज। ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं, नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इश्यूज, नो अंडरलाइंग इश्यूज एज सच, बट येस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो, तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
0: बिल्कुल, जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल
0: ए दिल है मुश्किल जीना, ये जी सुनते हैं ये गाना।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मीन्स कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूँ।

0: तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स. ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती. तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए. जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं. ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल. ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है. जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं. अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं. चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं. अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है. हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो. पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं, और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं. एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है. और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है. नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो. तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है.
1: बिल्कुल. डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
0: ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो. स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो. हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं. एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और को BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन. ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है. अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री. तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे. तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में. सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस. पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस. और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है. ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है. थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी.

0: एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते तो यस द गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइन अप हम करें तो यस द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे. कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
1: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं.
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज्ड टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहां पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूं कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा. मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना, आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहां पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहां पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग.

0: एज वेल। सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक, एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच, तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं।
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है, आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे। यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करे, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: श्वार।
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी।
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
0: ऑल गुड।
1: तो सुनते हैं ये।
0: ठीक है।

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग with everything, so thanks to them, thanks to all the listeners कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग

0: दर्जे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के

हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। युवा साथी आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी।

0: साथीरा आपरे भेजड़ी फरमाइशा आपने जरूर सुनावाला और उनसु पहला आपने सुनावा राजस्थानी लोक गीत गायिका पूजा प्रजापसु भोम सिंगरी बातचीत।
1: मीठी वाणी बोलना सुर में बसियो अरत लोक कथारो प्रेम ही राजस्थान रो सरत। राम राम सगड़ा इतालु श्रोताओं ने, आप सुन रिया हो आपरे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मैं आपरे साथे आपरे रेडियो दोस्त भोम सिंह बुधवार इन खास कार्यक्रम में आज आपरे साथे स्टूडियो में मौजूद है राजस्थानी लोक संगीत री उभरती हुई सुरीली आवाज सिंगर पूजा प्रजापत जी। जिनारी आवाज ने लाखा लोग पसंद करे और राजस्थान लोक संगीत ने एक नई पहचान दी है। पूजा जी युवाणी कार्यक्रम में आपरो घणे मान छू स्वागत और अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला श्रोताओं ने आपरे बारे में बताओ और आपरी गायकी रो सफर कठे से शुरू हुयो ओ बताओ।
2: मेरा नाम है पूजा प्रजापत और मेरी गायकी की शुरुआत हुई थी 2023 से और मेरा गांव था डावरा, मेरी जन्मभूमि।
1: राजस्थानी लोक संगीत से आपरो लगाव बचपन से है या बाद में रुचि लागी?
2: नहीं, मतलब बचपन से हो, यूं मतलब गांव में मैं नॉर्मल मंदिर वगैरह में भजन गाती थी।
1: परिवार में संगीत रो कोई माहौल
2: नहीं सर।
1: आपरो पहलो गानो या स्टेज प्रोग्राम कद हुयो, उन टाइम आपरो कई अनुभव रियो वेला?
2: मारो पहलो गानो 2023 में निकलियो और स्टेज प्रोग्राम भी मैं 2023 में ही करियो तो।
1: उन टाइम आपरो कई अनुभव रियो?
2: अनुभव बहुत अच्छा रियो, थोड़ी घबराहट भी हुई थी पर फिर भी अच्छा था अनुभव।
1: सोशल मीडिया रो जमानो है और आपरे इन सफर में सोशल मीडिया रो कितो योगदान है?
2: बहुत ज्यादा योगदान रहा, सबने सपोर्ट ही किया है, बहुत अच्छा।
1: गायकी रे सफर में कोई यादगार पल जको आपने आज भी याद है?
2: फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत अच्छा था, मतलब पहली बार में जब रिकॉर्डिंग किया था तब थोड़ी बहुत घबराहट भी थी और मन में गाने की भी थी कि नहीं गाना तो है, गाना तो गाना ही है। सामने मतलब बैठे भी थे दो चार लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, घबराहट भी थी पर रिकॉर्डिंग की अच्छी थी ऐसी नहीं, और मन में था कि बस सिंगर तो बनना ही है।
1: रिकॉर्डिंग और लाइव स्टेज शो में आपने कहीं फर्क महसूस हुआ?
2: फर्क तो मतलब होता ही है कि एक लाइव में मतलब एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है उसमें 5 लोग बैठे होते हैं और जो लाइव होता है उसमें 5,000 बैठे हैं। सबके सामने गाने में और रिकॉर्डिंग में फर्क तो होता ही है कि स्टूडियो में बंद कमरे में गाने में।
1: सही बात है, सब और सामने एक फर्क है। आज युवा कलाकार वास्ते आप लोग कोई संदेश है?
2: युवा कलाकार वास्ते हमारा यही संदेश है कि भाई जो भी मतलब अपना अपना कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जिनकी जिसमें रुचि है वही काम करो।
1: आपकी पसंद रो गीत और भजन जो आप गाना चाहो?
2: मेरी पसंद का तो मतलब सब पसंद ही है, गीत हो चाहे भजन हो कोई भी हो। बाकी मैं मतलब स्कूल लाइफ से भी ऐसे गाती थी, 26 जनवरी वगैरह होती नहीं तो मैं देशभक्ति गीत भी गाती थी, मतलब सबके सामने गाते ही थे। और फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की मैंने, फिर लाइव भी किए हैं, तो पसंद सब पसंद ही है। भजन कोई बुरा नहीं होता, गीत कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। और मेरा जो अभी वायरल हुआ था वो मतलब एक मायरा सॉन्ग है जो भाई बहन का है, वो बहुत अच्छा है जो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है वो भी।

0: बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज है। आप नया युवा कलाकार जो आपकी तरह संगीत में अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, अपने राग को कैसे सुधार सकता है?
1: पड़ता है सर, स्टूडियो में करो या चाहे घर पे करो।
0: स्कूलिंग टाइम में आप मतलब स्टेज प्रोग्राम या भजन लोकगीत उन टाइम भी मतलब आप इन क्षेत्र में आगे होता, आप रुचि होती?
1: मतलब स्कूल लाइफ में कविताएं और देशभक्ति गीत हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को मतलब गाती थी मैं, और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब
0: अच्छा,
1: प्रतिज्ञा वगैरह भी बोलती थी स्कूल लाइफ से।
0: तो पहला भजन आपने कब गाया था?
1: पहला भजन 2023 में गाया था मैंने स्टूडियो में।
0: किससे संबंधित था? लोगों के सामने स्टेज प्रोग्राम पहली बार कब किया था आपने?
1: वो भी 2000।
0: आपके प्रेरणादायक कौन है?
1: सर मैं मतलब राजस्थानी कलाकार का बोलूं तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब अपना जो प्रेरणादायक मानती हूँ वो प्रकाश जी माली है, उनको मानती हूँ
0: अच्छा,
1: और उनके ही भजन सुनती हूँ मैं।
0: उनको देखे आपने सीखा है और रियाज किया है?
1: वो

0: बहुत ही अच्छी और मधुर आवाज़ है आपकी।
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आज युवाणी में आने के लिए और आपका अनुभव साझा करने के लिए। मैं कहना चाहूँ कि लोक संगीत सिर्फ सुर नहीं है, अपनी संस्कृति और पहचान और गौरव है। तो श्रोताओं, जो भी कलाकार है वो पूजा जी देख प्रेरित हो और आप स्टेज प्रोग्राम और सोशल मीडिया द्वारा आपने आगे बढ़ावन खातर गीत वगैरह लोक भजन वगैरह गाओ। युवाणी में आप रो सफर किया रियो, श्रोता और वास्ते दो शब्द।
1: बहुत अच्छा रियो, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा सफर रहा।
0: आज अपने साथ है राजस्थानी में लोक गायिका पूजा प्रजापत जी और मैं आपके साथ भोम सिंह सुनता रहूं।

0: एक बातचीत भेंट वार्ता जिनर मायने राजस्थानी लोकगीत गायिका पूजा प्रजापशु भोम सिंह री बातचीत इनरो संयोजन किन हो मनीष कुमार सोलंकी और प्रस्तुति ही राजेश लामरोड री।
1: अरे ना तो हरी रे ना मेरो ए भाई।

0: सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य और बलवीर सिंह।
1: और खत आयो है कला नोरसू, नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा।
0: तो साथ ही इन सगले श्रोतारी पसंद माते आप सुना आ आगली राजस्थानी लोक रचना।

0: सदिना शुरू करा फरमाइशा रो सिलसिलो खाने सारा श्रोता है जगह माने लगो लग आवरी फरमाइशा पूर्ति कर रहा है। सदिना अ फरमाइश माने लिख रहे भेजी है कलनोर शू भेजने वाला रेडियो श्रोता है नरजिंदर शर्मा किरण नितिन और मयंक शर्मा।
1: अगली फरमाइश आई है मेघवंशी नगर भादुकला जोधपुर से भेजने वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष भाव्यांश रमनदीप निशा प्रिया अरविंद सगड़ो सोडा परिवार।
0: गांव खारिया बीकानेर से वहाँ पर साथ जुड़िया है मनोज कुमार तंवर पुखराज सचिन लायूस और यारा परिवार वाला।
1: मोतीनगर दिल्ली से भेजन वाला है कविता अनिल गौरव और मानसी अरोड़ा।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से वहाँ पर साथ जुड़िया है

0: खतरा अबार आप बहुत ही चौकी राजस्थानी लोक रचना सुनी। हर निम्बोली कार्यक्रम में मायने आपने एक राजस्थानी शब्द दया कर रहा जिनरो अर्थ आप री फरमाइश रे साथ भेजा कर हो। तो आज रे इन कार्यक्रम में आपने एक शब्द देवा अंगरखा। अंगरखा शब्द रो अर्थ यदि आपने ध्यान हुए तो आप री फरमाइश रे साथ जरूर लिख कर भेजो। जगह साथी नया जुड़िया है वाने व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर हम बता देवा 94133 29 359। इन नंबर माथे आपरो नाम आपरो पतो आपरी फरमाइश और साथे साथे राजस्थानी शब्द अर्थ माता लेकर जरूर भेजो।
1: और खत आयो है मुरादाबाद यूपी से भेजे नोड़ा है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से आपार साथे जुड़िया है धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार।
1: टीकमगढ़ मध्य प्रदेश हूँ ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष।
0: वडिंग खेड़ा पंजाब से आपार साथे जुड़िया है मिट्टू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। इन साथ ही भोपालगढ़ से आपा ने फरमाइश लिखकर भेजी है सुरेश मेघवाल, पीदू पुरोहित।

0: साथीरा अगली फरमाइश माने लेखर भेजी है गाँव धुंधाड़ा सु भेजने वाला रेडियो श्रोता है अल्लादीन धुंधाड़वी
1: कालका सु शुभ चंद्र और साहिल।

0: साथियों अगली फरमाइश मारता लेकर भेजी है गांव गोसाई नगर से खिसन वाला रेडियो श्रोता है पप्पू लीलावत परवीन प्रदीप लक्षित सरोज और सगड़ो लीलावत परिवार।
1: और खत आयो है उमर खेर से भेजने वाला है गंगाधर और सुमित्रा।
0: खांडा फलसा मियाँ चौक जोधपुर से आप साथ जुड़िया है अब्दुल हमीद चिपा रईसा बानो अब्दुल अहद अब्दुल मुस्वीर और आयशा बानो।
1: चंडीगढ़ से विमला अनेजा।

0: साथीरा आप रखत जगर लगे लुगारिया है और ओ खतायो है वडाली देशमुख सू राजेश शिवसागर इंद्रताई खोबर खेड़े अफर मैं सही है दादा बाबू रोड झारखंड सू मोहम्मद सियासी नंजाद साइना हसन मिफ्रा बाबू अहद बेबी चाहत हकीकत पूरा मऊ सू मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा और पेंडू स्वर्णकार
1: टीकमगढ़ मध्य प्रदेश सू आप साथ जुड़ी है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस इन दी सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम

0: विकास समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं गुड इवनिंग जोधपुर।

मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त श्रेया व्यास। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। दिन भर की भाग दौड़, काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियों और अपने व्यस्तताओं के बाद जब घड़ी की सुइयां इशारा करती है कि 6:05 हो गए हैं, तो सुनते हैं एक नया अध्याय। किसी के लिए घर लौटने का समय होता है तो किसी के लिए दोस्तों से मिलने का, किसी के लिए परिवार के साथ बैठ के चाय पीने का, और कुछ लोग अपने सपने बुनने लग जाते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि शाम के 6 बजे के बाद हमारी दुनिया कैसी हो जाती है।

शाम का समय, दिन और रात के बीच का वह खूबसूरत पल जहाँ सूरज धीरे धीरे विदा लेता है और आसमान अपने लिए सुंदर रंग तैयार कर देता है। कई लोगों के लिए शाम राहत आती है। ऑफिस से लौटते लोग, ट्यूशन से घर आते बच्चे या चाय की दुकानों पर लगती है महफिलें, पार्क में कई लोग टहलते हैं। शाम हमें याद दिलाती है कि दिन चाहे कैसा भी बीता हो, पर कुछ पल अपने लिए जरूर निकालें।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में कितनी अलग अलग दुनियाएं चल रही होती है अपने आसपास, या फिर दुनिया में इतने लोग हैं वो क्या करते होंगे अलग अलग समय में। कोई अस्पताल की ड्यूटी कर रहा होता है तो कोई अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा होता है, कोई पढ़ाई में जुटा होता है तो कोई अपने परिवार के साथ बैठा होता है, कोई अकेले छत पर बैठ के अपने विचारों में खोया होता है। इसीलिए शाम सिर्फ एक समय नहीं है बल्कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
5: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
4: इसके लिए रेलवे स्टेशन ऊपर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर QR कोड स्थापित किए गए हैं।
5: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।
6: दिन भर हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिसमें हमें खुद से कुछ सवाल करने चाहिए। आज मैंने क्या सीखा, या मैं आज खुश हूँ? क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ? कई बार जिंदगी से हमें बहुत कुछ जवाब शांत समय में ही मिल पाते हैं।

शाम और यादों का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत पुराना है। बचपन में शाम का मतलब होता था खेलना कूदना, दोस्तों के साथ शोर मचाना और माँ की आवाज सुनते ही फटाफट घर दौड़ कर आ जाना। आज समय बदल गया है, लेकिन शाम आज भी कुछ ना कुछ जरूर याद दिला।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, शाम हमें सिखाती है कि हमें हर दिन का अंत जरूरी नहीं है कि बुरा ही हो। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है, पर कभी कभी ऐसा भी

होता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो चाहे ना हो, पर अंत हमेशा खूबसूरत हो सकता है। चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, शाम उम्मीद लेकर आती है कि कल एक नई शुरुआत जरूर होगी।

श्रोता, इसी खूबसूरत गाने के साथ दीजिए मुझे इजाजत। याद रखिए, हर शाम आपके साथ सुकून का एक छोटा सा पैगाम लेकर जरूर आती है, बस उसे महसूस करने की देरी होती है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आप सुन रहे थे मेरे साथ गुड इवनिंग जोधपुर, मैं हूँ श्रेया व्यास।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM Sun City Channel, जिस पे कार्यक्रम था गुड इवनिंग जोधपुर। शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे जयमाला प्रोग्राम विविध भारती से।

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयवाला में आपका स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। आज फिर कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति के साथ, यानी आपको सुनवाएंगे देशभक्ति से भरा ये गाना। इसे हमने लिया है फिल्म मैरी कॉम से। इसे गाया है विशाल दादलानी और सलीम बच्चन ने। गीत शिवम का है, संगीत शशि सुमन का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत, गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम का अगला गीत जाबाज फिल्म से है, इसे गाया है मनहर ने। गीत इंदिवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गाना, गीत लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आपने सोल्जर फिल्म का गाना सुना सोनू निगम की आवाज में। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन फिल्म का गाना। गीत समीर का है, संगीत संजीव दर्शन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने इंद्रधनुष के अंतर्गत रागों पर आधारित कार्यक्रम राग अनुराग। पहला गाना हमने राग अहिर भैरव पर लिया है, इसे गाया है मन्ना डे ने।

अगला गाना गॉड मल्हार राग पर आधारित है। इसे हमने लिया है फिल्म बरसात की रात से। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट। गीत साहिर का है, संगीत रोशन का।

आइए अब सुनते हैं राग मिश्र शिवरंजनी का ये गाना। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म का नाम है महबूबा।

आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं नंदलाल पाठक की लिखी झलकी चिट्ठी। निर्देशक हैं सीबी मंडावी।

0: अच्छा अच्छा अभी जाता हूँ।
1: अरे यहाँ तो बहुत सी चिट्ठियां हैं, इनमें मेरी कौन सी है ये किससे पूछूं? वो जो लाल पीली है वो तो अपनी नहीं हो सकती, ये लंबा लिफाफा भी अपना नहीं लगता। अब बच गए ये दो पोस्टकार्ड और तीन लिफाफे, इन्हीं में से कोई अपनी चिट्ठी हो सकती है। क्या करने का, द्वारका आज फैक्ट्री में आया नहीं, वो रहा रंगू। रंगू मैं कैंटीन में चाय पीने जा रहा हूँ, बोर्ड पर से मेरी चिट्ठी जरा ला कर देना।
2: आई है क्या?
1: हाँ हाँ आई है।
2: अच्छा अभी लाया। ये लीजिए।
1: हाँ।
2: ये रही आपकी चिट्ठी।
1: हाँ।
2: अब इस खुशी में मुझे भी एक चाय पिला दीजिए।
1: अरे हाँ भाई हाँ। अब मैनेजर साहब मेरे नाम पर एक चाय रंगू को भी। अच्छा रंगू मैं चलता हूँ।
2: अच्छा भाई।
1: अब देखने से तो ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी मनिया की ही है, पिछली बार भी ऐसा ही लिफाफा भेजा था। द्वारका को भी आज ही डांडी मारना था, किससे पढ़वाऊं? अगर चिट्ठी मनिया की निकली तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बस अब सीधे घर चलता हूँ, आज हाफ डे की रजा ही सही।

0: अरे सिद्धू इतनी जल्दी? हाँ। भाई तबीयत तो ठीक है?
1: आज हाफ डे ले लिया बिहारी।
0: आखिर बात क्या है?
1: मनिया की चिट्ठी आई है।
0: ओह क्या लिखा है?
1: अब मैं क्या जानूं क्या लिखा है, द्वारिका आज काम पर आया ही नहीं।
0: अरे भाई तू लक्ष्मण से पढ़वा लेते।
1: देखो बिहारी, लक्ष्मण वही काम करता है जो मैं करता हूँ, बल्कि जो मशीन लक्ष्मण से ठीक नहीं होती उसे मैं चला रहा हूँ, लेकिन उसी काम के लिए उसे 1,500 रुपए मिलते हैं और मुझे 1,000 रुपए। मैं उससे मनिया की चिट्ठी नहीं पढ़वाऊंगा, वो हंसेगा नहीं।
0: अरे बुद्धू, कहाँ पढ़ा लिखा लक्ष्मण और कहाँ अंगूठा छाप तुम। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में हुनर है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट जो है, कितना फर्क है तुम दोनों में।
1: हाँ उतना ही जितना आदमी और जानवर में है।
0: नहीं नहीं नहीं सिद्धू, मैं ये नहीं कह रहा।
1: और नहीं तो क्या, मशीन पर लिखा हुआ मशीन का नाम जब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं अंधा हूँ।
0: देखो
1: आंख रहते हुए भी अंधा।
0: देखो सिद्धू,
1: हाँ?
0: इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तुम रोज रात को पढ़ने तो जाते ही हो।
1: हाँ?
0: थोड़े दिनों में सब सीख जाओगे।
1: अरे जब सीखूंगा तब सीखूंगा ना, आज तो नाव भंवर में फंस गई।
0: मैं सिद्धू, अगर तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी होती
1: हाँ?
0: तो मैं जरूर पढ़ देता, लेकिन मनिया की चिट्ठी तुम तो जानते ही हो।
1: अरे जानता हूँ कि मनिया के पिताजी तुम्हारे पिताजी के यहाँ शादी की बात करने गए थे, लेकिन अब तो बात खत्म हो गई ना।
0: बात किसने खत्म की?
1: अरे तुम्हारे पिताजी ने, उनको पूरा दहेज चाहिए था।
0: तुम्हें तो मालूम है मैंने पिताजी को कैसा पत्र लिखा था। मनिया जैसी सुंदर गुणी पढ़ी लिखी लड़की से दहेज लेकर उन्होंने ये सब सोचा ही कैसे।
1: अब जाने भी दो बिहारी, सुबह की आई ये चिट्ठी, अब पढ़ भी दो यार।
0: अच्छा लाओ लाओ।
1: हाँ।
0: हाँ सुनो।
1: हाँ
0: मेरे प्यारे वो। भाई वाह, इस वो का जवाब नहीं यार।
1: आगे क्या लिखा है?
0: लिखा है आपका लिखवाया हुआ पत्र मिला।
1: हाँ।
0: पत्र किससे लिखवाया था?
1: द्वारका से। पढ़ो पढ़ो।
0: आप राजी खुशी हैं ये जानकर बड़ी खुशी हुई। एक आध गलतियां हैं फिर भी राइटिंग बहुत अच्छी है।
1: राइटिंग मैं क्या जानू।
0: सो तो है। हाँ, हाँ सुनो, आप रोज रात को पढ़ने जाते हैं ये बड़ी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: जिस दिन आपके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिलेगी
1: हाँ।
0: उस दिन शिवालय में प्रसाद चढ़ाऊंगी। देखो मुझे प्रसाद देना मत भूल जाना।
1: अरे भैया तुम्हारा मुंह तो सबसे पहले मीठा करवाऊंगा।
0: आगे समाचार ये है
1: हाँ।
0: कि तुम्हारे गांव का एक लड़का है बिहारी, तुम्हारी फैक्ट्री में
1: हाँ।
0: अपनी बिरादरी का ही है। मेरे पिताजी कभी बिहारी के पिताजी से मेरी और बिहारी की शादी की बात चलाने गए थे। दहेज की मांग पर बात टूट गई थी। हमारी बिरादरी में तो कभी दहेज का लेन देन हुआ ही नहीं। वे लोग अब खुद मेरे पिताजी से मिले, बोले हम बिना दहेज से शादी करने को तैयार हैं। उनके जाने पर मैंने भाई

0: से साफ साफ कह दिया कि अब मैं तैयार नहीं। मैंने ये भी बता दिया कि पिछले महीने मेले में मैंने सिद्धू को देखा है, मुझे पसंद है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या, पढ़ लिख जाएगा, माँ के पेट से थोड़े ही कोई पढ़कर आता है। तुम बिहारी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। मेरी गाय को बछड़ा हुआ है। चिट्ठी का जवाब जाने दो, क्या कहूँ, तुम्हारी मनिया। देखा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था।
1: अरे अब जाने दो, अब एक काम और करो, जैसे उसकी चिट्ठी पढ़ दी है ना, वैसे ही मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दो।
0: ना बाबा ना, मुझसे नहीं लिखी जाएगी।
1: अरे क्यों नहीं लिखी जाएगी?
0: मान लो मनिया के पिताजी मेरे पिताजी की बात मान गए तो?
1: अरे तब तो मनिया को और अच्छा वर मिल जाएगा। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक चिट्ठी पूरी कर देना है।
0: ना ना ना ना, ना। तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा।
1: अरे भैया बोलना क्या, मन की बात नहीं बोली जाती, समझ लो कलम तुम्हारी मन मेरा। अच्छा अब मैं निकलता हूँ।
0: कलम तुम्हारी मन मेरा, ऐसा कहीं होता है? हो सकता है। कलम तुम्हारी मन मेरा।
2: यही है, बस यही है, विकास उद्योग लिमिटेड। हिंदी में भी यही है और अंग्रेजी में भी वही। चौकीदार साहब, विकास उद्योग लिमिटेड यही है ना?
3: हाँ यही है। क्या काम है?
2: मुझे सिद्धू से मिलना है।
3: बहन जी उस हाल में बैठ जाओ, मैं सिद्धू को अभी बुलाता हूँ।
2: हाँ
1: अरे मनिया, तुम यहाँ कब, कैसे?
2: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। हाँ। मैं मनिया, यहाँ अभी अभी ऐसे ही।
1: अरे ऐसे ही मेरा मतलब है कैसे?
2: गांव से सीधे बस से आई, चिट्ठी बनकर।
1: चिट्ठी बनकर?
2: मुझे जब तुम्हारी चिट्ठी यानी तुम्हारी ओर से बिहारी की चिट्ठी मिली। हाँ। और जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तभी तय कर लिया, अब तुम्हें चिट्ठी तभी लिखूंगी। हाँ। जब तुम उसे पढ़ने लायक हो जाओगे।
1: हाँ।
2: और सुनो।
1: हाँ।
2: तुम भी मुझे अपने हाथ से ही चिट्ठी लिखोगे।
1: हाँ।
2: महीने दो महीने जितना भी लग जाए, समझे?
1: ठीक है,
2: मैं इंतजार करूंगी।
1: अच्छा,
2: आगे पूरी जिंदगी पड़ी है।
1: हाँ।
2: तुम सिद्धू हो कि बुद्धू, चिट्ठी लिखी और पढ़ी जाती है।
1: हाँ।
2: जो लिखाई और पढ़ाई जाती है वो चिट्ठी नहीं रह जाती।
1: अरे बात क्या है, कुछ बताओगी भी कि बस पहेली ही बुझाती जाओगी?
2: बस यही समझ लो कि मैं चिट्ठी पढ़ती जा रही थी।
1: हाँ।
2: और मेरे पैरों के नीचे धरती कांप रही थी।
1: हाँ?
2: उफ, कितनी गंदी भाषा थी।
1: गंदी?
2: तुम्हारी होती तो चलती, लेकिन किसी और ने ऐसी चिट्ठी लिखी। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुशासन मेरा चीरहरण करना चाहता हो।
1: हाँ?
2: फिर तो मैंने कान पकड़े, चिट्ठी लिखने का मन हुआ तो खुद चिट्ठी बनकर आ गई।
1: हाँ।
2: अच्छा अब अपनी कहो, कैसे हो, कहाँ रहते हो?
1: अरे देख तो रही हो, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ सुनो, मैंने अपना कमरा भी ले लिया है।
2: अच्छा,
1: फैक्ट्री की कॉलोनी में।
2: अच्छा,
1: तुम्हें मालूम नहीं एक महीने से ऊपर हो गए।
2: सच?
1: हाँ?
2: मुझे दिखाओ ना।
1: ठहरो, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ से सीधे बस जाती है।
2: अच्छा।
1: हाँ।
2: कितनी अच्छी बस है ना?
1: फैक्ट्री की बस इससे भी अच्छी है, रोज हम उसी से काम पर आते जाते हैं।
2: तुम काम पर नहीं हो तो पैसा कट जाएगा?
1: अरे मेरी सारी छुट्टियाँ बाकी हैं, इसलिए कभी कभी हाफ ले लेता हूँ, शादी के लिए सब छुट्टी बचा रखी है।
2: चलो हटो, तुम बड़े वो हो।
1: ये देखो, ये रहा तुम्हारा कमरा।
2: कितना अच्छा है।
1: आ,
2: सब पक्का है।
1: आ,
2: और खिड़की भी है। अरे की क्या है ये चिट्ठी, किसकी?
1: पढ़ के बताओ।
2: तो ये बात है, तुमने कर्ज ले रखे हैं।
1: वो डिपॉजिट देना था ना, 500 रुपए सेठ छदामीलाल से कर्ज लिया।
2: क्या सबूत कि तुमने 500 रुपए ही लिए 5000 नहीं?
1: अरे मेरे साथ रघु भी गया था सेठ के यहाँ, सोसाइटी दफ्तर में सबको पता है, मैंने सबको बता दिया, छिपाया बिल्कुल नहीं। चलो किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं, जरूरत पड़ने पर रघु गवाही दे सकता है। हाँ
2: तो आओ मेरे साथ।
1: चलो।
4: अरे आओ आओ सिद्धू भैया, आओ, मेरी

0: टिट्टी मिली होगी।
1: हाँ।
0: क्यों भैया ब्याज देने आए हो कुल मिला के?
2: ब्याज देने नहीं, पूरा हिसाब करने आए हैं।
0: आप सिद्धू की कौन लगे हैं बहन जी कुल मिला के?
2: मैं इनकी होने वाली वो हूँ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कुल मिला के।
2: इन्होंने कितना कर्ज लिया था?
0: कर्ज को की है बहन जी, जो लियो है दे देगो। फिर भी आप कह रहे हैं तो बताए देता हूँ बहन जी। 5,000 रूपए लिए थे इसने।
1: 5,000 रूपए?
2: आप चुप रहिए। हाँ तो सेठ जी, 5,000 में 5 के आगे कितने शून्य होते हैं?
0: आप तो मजाक कर रहे हैं बहन जी। 5,000 रूपए मतबल के 5 के आगे 3 शून्य होंगे कुल मिला के।
2: जैसे 5 का 5,000 बनाया, वैसे ही 1 शून्य और बढ़ाकर 50,000 क्यों नहीं कर लिया आपने?
0: ठीक हो बहन जी, बरसों को रोजगार है मारो। बहन जी झूठ काहे को बोलूंगो, ए देखो सब लिखा पड़ी है हमारे पास, सिद्धू के अंगूठे की निशानी भी है कुल मिला के।
2: लिखा भी आपका है और पढ़ा भी, और ये तो अनपढ़ हैं। इनके साथ जो रघु जी आए थे वो भी अंगूठा छाप है, उन्होंने भी कहा है कि 500 रूपए लिए थे, सारी सोसाइटी को भी मालूम है। अच्छा अब हम लोग पुलिस थाने जा रहे हैं, गवाह हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
0: पुलिस पुलिस को की करना है बहन जी, आपस में बैठ के सुलझा लेंगे कुल मिला के। आप तो बहन जी उल्टी गंगा बहावे हैं।
2: आपको सीधा करने के लिए उल्टी गंगा बह रहे हैं।
0: मैं तो मर जाऊंगा बहन जी, मारो धंधो चौपड़ हो जाएगो हो। माफ करियो बहन जी, माफ कर दियो।
2: ये लो 500 रूपए और भरपाई का रसीद दो।
0: अभी दिए देता हूँ बहन जी, अभी दिए देता हूँ। आज किसको मुंह देखो तो सवेरे सवेरे कुल मिला के।
2: सूद भी दूं क्या?
0: सूद को की करो है बहन जी, सूद को की करो है। आप मेरो पिंड छोड़ो छोड़ो, कुल मिला के जान बची तो लाखों पाए। एलो रसीद ले लो, पढ़ लियो कुल मिला के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
2: आप मुझे बस पर बैठा दो, मैं गांव चली जाऊंगी।
1: मनिया एक बार कमरे में चलो ना।
2: नहीं अभी नहीं।
3: चिट्ठी। हवा महल में अभी आप नंदलाल पाठक की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया CB मंडावी ने। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

0: शिकायतें टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पता है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खुले पैसों की समस्या से अब मुक्ति मिल गई है।
2: हाँ, रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार के पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे प्रमुख यूपीआई मोड से डिजिटल माध्यम द्वारा कर सकते हैं।
1: इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस, गुड्स एवं अन्य सभी स्थानों पर क्यूआर कोड स्थापित किए गए हैं।
2: डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न सिर्फ छुट्टे पैसों की परेशानी से मुक्ति मिल रही है, बल्कि लेन देन में लगने वाले समय में भी कमी आ रही है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे का सभी से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर रेलवे के डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे प्रयास में सहयोग करें। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ, उत्तर पश्चिम रेलवे।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम चित्रलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म रांझना से। इसे गाया है जावेद अली, कीर्ति सगतिया और पूजा ने। गीत इशाद कामिल का है, संगीत ए आर रहमान का।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य।

कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल

0: ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, तान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ

0: ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोक भवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है हर फैसले से पहले एक सवाल क्या मैं तैयार हूं अगर जवाब है हां तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर
1: ये आकाशवाणी है मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पश्चिम बंगाल कर्नाटक कोंकण गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्युआन को पराजित किया प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ नमस्कार

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए एक गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं जवानी दीवानी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरी का।

सिलसिला फिल्म के इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और रायन मुखर्जी।

साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है।

हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में रामजी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहा अली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, रामजी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शान संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सीक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेट्री को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाए तो सिनेमा इतिहास बन जाता।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थीं और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।

के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया की। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग

अपना जलवा बरकरार रखते हैं और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरे यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हमने समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो जौक साहब फरमाते हैं, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

था जलवा है जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दिखाई दे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से ढलती जाए रात कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पोल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा

0: कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।